मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से

0: देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: जिस धरती ने हमें जन्म दिया, जिसने हमारी पहचान बनाई और जिसके गौरवशाली इतिहास ने हमें स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया, उस मातृभूमि को शत शत नमन। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति, उसके आदर्शों और उसके नागरिकों के समर्पण में बसती है। राष्ट्र के प्रति सम्मान और कर्तव्य की भावना ही सच्ची देशभक्ति का आधार है। प्रस्तुत है राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत एक प्रेरणादायी देशभक्ति गीत।

कहा जाता है कि जब मन भ्रमित हो तब श्री कृष्ण का स्मरण जीवन को नई दृष्टि देता है। उनकी बांसुरी प्रेम का संदेश सुनाती है और उनके उपदेश कर्म, धैर्य और विश्वास की राह दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए।

ज्ञान संगीत कला और वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती का स्मरण मन को निर्मल विचारों से भर देता है। उनकी कृपा से बुद्धि में विवेक, वाणी में मधुरता और जीवन में ज्ञान का प्रकाश बना रहता है। हर नई शुरुआत में उनका आशीर्वाद सफलता का आधार माना जाता है।

गुरु नानक देव जी ने संसार को यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान हैं। उन्होंने सेवा को पूजा, ईमानदारी को धर्म और प्रेम को जीवन का सबसे बड़ा मूल्य बताया। उनकी वाणी आज भी समाज को भाईचारे और सद्भाव का मार्ग दिखाती है।

भगवान महावीर का जीवन आत्मसंयम, अहिंसा और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी कहलाता है। उनका संदेश आज भी शांति और सह अस्तित्व की प्रेरणा देता है।

0: भक्ति के सुरों में डूबे इन पावन क्षणों के साथ आज का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है।
1: ये था भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आलेख है नीरज सालवी का और वाचक हैं आसिफ अली।
1: अक्सर हम सोचते हैं कि तपस्या या साधना केवल हिमालय की गुफाओं में संसार से दूर रहकर ही की जा सकती है, लेकिन सच्ची तपस्या किसी स्थान पर निर्भर नहीं करती। यह तो मन की अवस्था है। जिस क्षण मन संयमित हो जाता है, वहीं से साधना आरंभ होती है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने दो मार्ग आते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय वो है जो अभी सुख देता है, लेकिन आगे चलकर दुख या बंधन का कारण बनता है। जैसे इंद्रियों की इच्छाएं आलस्य या झूठे सुख अपनी तरफ खींचते हैं और हम कमजोर पड़ने लगते हैं। श्रेय वह मार्ग है जो शुरू में कठिन लगता है, पर आत्मा को ऊंचा उठाता है। संयम, सत्य, कर्तव्य और आत्मनियंत्रण श्रेय के मार्ग हैं। श्रेय वह है जो दीर्घ काल में सही हो, जैसे ईमानदारी से, मेहनत से करियर बनाना, जबकि प्रेय वह है जो तुरंत सुख दे, जैसे मनोरंजन या आराम। दोनों का संतुलन आवश्यक है, लेकिन जब विद्यार्थी परीक्षा के समय पढ़ाई छोड़कर लगातार मोबाइल चलाने या खेल में समय गंवाने लगता है, तो वो तत्कालिक सुख प्रेय के कारण अपने स्थायी हित श्रेय को खो देता है। ठीक वैसे ही जैसे सरसों का तेल और दूध, दोनों अपने स्थान पर उपयोगी हैं, पर मिलाने पर दोनों ही बेकार हो जाते हैं। इसलिए जीवन में विवेक यही है कि हम प्रेय को संयम से और श्रेय को प्रधानता से अपनाएं। हिमालय की ठंडी चोटियों पर जाकर साधना करना सरल हो सकता है, लेकिन असली साधना तो संसार के बीच रहकर भी मन को शांत और पवित्र रखना है। जो व्यक्ति भीड़ में रहकर भी भीतर से एकाग्र है, वही सच्चा तपस्वी है। तपस्या का अर्थ है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। आंख वही देखे जो पवित्र है, वाणी वही बोले जो हितकारी है, और मन वही सोचे जो शुभ है। इस संतुलन से घर ही आश्रम बन जाता है और मनुष्य स्वयं साधु। सच्चा साधु वह नहीं जो वस्त्र बदल ले, बल्कि वह है जो विचारों को बदल ले, जो अपने भीतर की अशुद्धियों से लड़े, वही तपस्वी है। इसलिए तपस्या के लिए

0: हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं। हिमालय तो मन में बसाना है, जहां विचार निर्मल हो और आत्मा शांत। यहीं से आरंभ होती है वो यात्रा जो हमें परमात्मा के साक्षात्कार तक ले जाती है। भीड़ में भी मन को शांत रखने वाला सच्चा तपस्वी आज के समय का अत्यंत गहन और प्रासंगिक विषय है, क्योंकि आधुनिक जीवन में मनुष्य चारों ओर से भीड़, शोर, प्रतिस्पर्धा और मानसिक दबावों से घिरा हुआ है। भीड़ केवल सड़कों या बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन के भीतर भी बस चुकी है। विचारों की भीड़, इच्छाओं की भीड़, अपेक्षाओं की भीड़, असंख्य चिंताओं की भीड़। मैं अपने मन को स्थिर, शांत और संतुलित बनाए रखना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। यह वही कर सकता है जो भीतर से जागरूक, संयमी और आत्मनियंत्रित हो, और यही व्यक्ति वास्तव में सच्चा तपस्वी कहलाता है। सामान्यतः तपस्वी की छवि एक ऐसे व्यक्ति की बनाई जाती है जो जंगलों या पर्वतों में जाकर कठोर साधना करता है, संसार से दूर रहता है और भौतिक जीवन का त्याग कर देता है। किंतु सच्चे अर्थों में तपस्या का स्वरूप इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है, क्योंकि वास्तविक तप वह है जो जीवन के बीचों बीच, लोगों के बीच, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव के बीच किया जाता है। जो व्यक्ति भीड़ में रहते हुए भी अपने मन को विचलित नहीं होने देता, जो क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों पर नियंत्रण रखता है, जो परिस्थितियों के अनुसार बहने के बजाय अपने भीतर स्थिरता बनाए रखता है, वही सच्चा तपस्वी है। ऐसा व्यक्ति बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी शांति का सोत्र बाहर नहीं, भीतर होता है। वह जानता है कि वास्तविक संतुलन बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति को साधने से आता है। भीड़ में शांति बनाए रखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का अधिकांश तनाव बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उन पर उसकी प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देने लगता है, हर आलोचना का दिल से लगा लेता है और हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है।
1: ये था चिंतन। आलेख था नीरज सालवी का और वाचक थे आसिफ अली। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। इसमें आज का विषय है जल भराव के नुकसान और रोकथाम के उपाय। आलेख और वाचन है डॉक्टर अनुराधा शर्मा का।
2: हमारा सभी किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज अपन बात करा खेत में जल भराव से होना वाला नुकसान न जल भराव के रोकने का तरीका होने के बारे में। देखो भाई बहनों, हम ये बात बहुत अच्छा तरीका से जाना कि बारिश हमारा लिए एक अनमोल उपहार है। ऐसा खेत जहाँ पे कि लंबा समय तक पानी भरेल रहे, वहाँ ये पानी गंभीर समस्या बनी जाए और इकेज अपन का जल भराव। जल भराव की ये समस्या खरीफ के मौसम में देखने में बहुत अधिक मात्रा में आए, और ऐसा खेत जहाँ की पानी की निकासी को उचित प्रबंधन नहीं है, वहाँ का खेत में किसान भाई बहनों बहुत परेशान रहे। जब खेत उनमें बहुत लंबा समय तक पानी भरेल रहे तो मिट्टी का अंदर हवा को संचार रुकी जाए, पौधा उनकी जड़ में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिले, और इकासी कई होए कि पूरा पौधा की वृद्धि रुकी जाए और पौधा उनकी पत्ती पीली पड़े न साथ में पौधा कमजोर हुई कि कभी कभी तो ऐसी स्थिति बने कि पूरा खेत की फसल नष्ट हो जाए, और जल भराव का कारण मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित हुई जाए। मिट्टी में बहुत सारा सूक्ष्म जीव रहे जी बहुत लाभदायक रहे, उनकी सबकी गतिविधि कम हो जाए यदि लगातार पानी भरेल रहे हो तो। हमारा सब किसान भाई बहनों ये बात बहुत अच्छा तरीका से जाने कि धान एकमात्र ऐसी फसल है जिसमें कि पानी भरेल रहनु बहुत आवश्यक है। इका अलावा जितनी भी फसल है जैसे सोयाबीन है, मक्का है, मूंग है, उड़द है या कोई भी सब्जी की फसल है, फलदार पौधा है, तो वहाँ जल भराव यदि होएगो तो ये फसल होन इके अधिक समय तक सहन नहीं करी पाए। और साथ में कई होए कि खेत में जब लगातार पानी बनेल रहे तो वहाँ फफूंद जीवाणु जनित रोग को प्रकोप बहुत बढ़ जाए, कीट होन की संख्या बढ़ी जाए, और इन सब समस्याओं से सबसे ज़्यादा जो होए नुकसान वो उत्पादन पे होए और गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाए, तो किसान भाई बहनों उनकी आय कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में खेत होन में उचित जल निकासी बहुत आवश्यक है, जल भराव के रोकनु बहुत आवश्यक है। सबसे सरल उपाय है कि पूरा खेत का चारों ओर और बीच बीच में भी नालियों बनाई के अतिरिक्त पानी के जो कि भरी हुई होए ओके जल्दी से जल्दी खेत से बाहर

0: निकालना आवश्यक है। यो सबसे प्रभावी और सबसे सरल उपाय है हमारा किसान भाई बहनों उनके लिए। एका साथ एक दूसरा उपाय भी है कि खेत को समतलीकरण। एका में कई हो कि अच्छी उपयुक्त तकनीक से पूरा खेत के समतल कर दे तो का से एक जगह पानी इकट्ठा नहीं हो और पूरा खेत में पानी समान रूप से फैली जाए। हमारा किसान भाई बहनों उनका खेत की मेड़ पे जो नाली होन बनी है उको नियमित रख रखाव करी के भी इन्हीं समस्या से समाधान पाई सके, क्योंकि वर्षा ऋतु शुरू होने का साथ ज इनकी सफाई बहुत आवश्यक है। यदि पानी का बहाव में कोई भी चीज़ आई रही है, बाधित हुई रही है पानी को बहाव, तो उन्हीं चीज़ के हटाई के पानी के अच्छा तरीका से बाहर निकलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह सब उपाय होने के बाद भी समस्या बनी है तो अपने बुआई की तरीका में बदलाव करना आवश्यक है। जो ऊंची क्यारी की बुआई है नी, रीच फेरो पद्धति जी के अपन का उकासी कई हो कि खेत में अलग अलग मेड़ और नाली बनी जाए तो पौधा की जड़ होन पानी में डूबी हुई नहीं रहे। कभी कभी कई हो कि खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करना का बाद भी किसान भाई बहनों ने नाली होन बनाई ली, खेत के समतलीकरण भी करे लियो और मेड़ की साफ सफाई भी करी ली, पर उनका बाद भी खेत में पानी भरेल रहे, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय स्थिति का अनुसार हमारी फसल चुनाव करता समय हमारे किसान भाई बहनों के ऐसी फसल को चुनाव करना चाहिए जो कि थोड़ी सी नमी या अस्थायी रूप से जल भराव के कुछ हद तक सहन कर सके। किसान भाई बहनों जल भराव की समस्या को समय रहते समाधान बहुत आवश्यक है, नहीं तो कई होए कि फसल को बहुत बड़ो नुकसान अपने उठानू पड़े। आप चाहे खेत में से जल निकासी की व्यवस्था का लिए नाली होन बनाओ, खेत के समतलीकरण करो, या मेड़ पे बनी हुए नाली होन को नियमित रख रखाव करो, या आपके लगी रही हो है कि भाई बुआई की तरीका बदली के भी अपनी के रोकी सका तो वो करो, या फसल और उनको चुनाव करते समय उनकी किस्म को चुनाव करते समय ऐसी किस्म चुनो जो कि अस्थाई जल भराव के सहन करी सके और भी वैज्ञानिक तरीका होने से अपन अपनी फसल की सुरक्षा बढ़ाई सका, उत्पादन के बढ़ाई सका, आय के बढ़ाई सका। आज किसान भाई बहनों से हमारो योज केणु है।
1: ये थी खेती की बातें जिसमें आज आपने जाना जल भराव के नुकसान और रोकथाम के उपायों के बारे में। वाचन था डॉक्टर अनुराधा शर्मा का। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

ये था श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे सुरेश वाडकर, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब पेश है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 9 बजे होगा मराठी कार्यक्रम। इसके तहत आज आपको सुनवाई जाएगी रमेश खरमाणे, प्रसिद्ध जल संवर्धक से वर्षा जल संचय पर हुई विशेष चर्चा।

शास्त्रीय संगीत के तहत सुबह 9:30 बजे आप सुन सकेंगे विदुषी पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन।

0: सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 बजे होगा फिल्म संगीत, 12:30 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से, दिन में 1 बजे होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, 1:30 पर सुनवाए जाएंगे लोकगीत, 1:45 पर होगा सुगम संगीत, दिन में 2 बजे और फिर 2:30 पर आप सुन सकेंगे चित्रपट संगीत। हमारी शाम की सभा शुरू होगी 5 बजे युवाणी कार्यक्रम के साथ। 5:45 पर होगा फिल्म संगीत, 6 बजे प्रसारित करेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6 के स्वर में सुगम संगीत सुनवाया जाएगा 6:30। 7:20 पर होगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, इसमें आज सुनिएगा महिलाएं स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएं, इस विषय पर साधना मिश्रा से भारती की बातचीत। फिल्म संगीत रात 8:15 पर, 9:15 पर और रात 10 बजे। रात 9:30 दिल्ली से रिले करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे विदुषी पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन। ये था आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से पहले संस्कृत में फिर हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अंतरिक्ष यात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीय परीक्षणे अम्ब्लिकल तंत्रस्य पृथक्करण प्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीय परीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करण क्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखण्डतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1% भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्त मञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मन्त्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्री शाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति।

0: एपीएमसी संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्री शाहः दहेगाम एपीएमसी परिषदः सदस्यैः सहापि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते जीएफएस गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिम एशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयं आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु एकादश भारतीय नागरिकेषु दश नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षा कार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारिभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्यास्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्य चक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्य स्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली

0: में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे हमारे भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें दूरदर्शी नेता बताया। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। निवेश और प्रौद्योगिकी विकास पर रहेगा फोकस। आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू। प्रदेश भर के 5.5 लाख से अधिक पशुपालकों तक पहुंचने का लक्ष्य। और प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमी, अगले 5 दिन भारी बारिश के आसार नहीं। 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शेख हमद बिन खलीफा का कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देशभर की सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंत्री किरण रिजिजू भारत सरकार की ओर से शोक संदेश देने कतर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमो ऐप और माई जीओवी पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सहभागी

0: बुद्धिमत्ता, युक्ति, समय की सदुपयोगिता, ऐसे कई कारणों से अपने आप को उस रूप में लाती कि वो पुरस्कृत होकर के समाज के सामने अपना नया परिचय पाते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में कल एक बड़े पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बुड़ानिया गांव स्थित बीएसएफ परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 21 लाख पौधे लगाने और 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति एमपीएमसी के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा लगाएंगे और समिति के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार की गई एक विशेष प्रकाशन पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह दहेगाम एपीएमसी बोर्ड के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। वे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ वन टू वन बैठक कर निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की तकनीकी विकास यात्रा पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही कई रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों का आदान प्रदान भी होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। देश में आम नागरिकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों में सौर बिजली संयंत्र स्थापित कर बिजली खर्च में प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपए की बचत करने का लक्ष्य रखा गया है। आज अच्छी खबर में प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन पर इंदौर से हमारे संवाददाता मनीन्द्र दुबे की ये रिपोर्ट।
3: पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को एक जन भागीदारी का रूप दे दिया है। पश्चिम मध्य प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया।
4: इंदौर में अब तक लगभग 7,000 सोलर संयंत्र स्थापित हुए हैं और 53,000 आवेदकों को लगभग 414 करोड़ रुपए सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना में अब तक कुल 219 मेगावाट क्षमता के संयंत्र कंपनी क्षेत्र के 15 जिलों में स्थापित हो चुके हैं, जिससे लगभग 2,62,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
3: इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी विमल फौजी ने योजना को ग्रामीणों और किसानों के लिए बड़ी आर्थिक राहत वाली योजना बताते हुए कहा।
5: देपालपुर नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब किसान इस ओर अग्रसित होते जा रहा है। जिस प्रकार उन्होंने अपने खेतों पे लगाए, लेकिन अभी अपने घरों के ऊपर भी सोलर पैनल लगा रहे हैं।
3: वहीं इंदौर नगर निगम सीमा में रहने वाले योजना के हितग्राही रूपेंद्र सिंह चौहान एक महत्वपूर्ण योजना बताते हैं।
6: हमने अपने घर पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। योजना के तहत हमें सरकार से अनुदान मिला है। इसके साथ ही हमारे घर में बिजली पर होने वाले खर्च में भारी कमी आई है।
3: मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
1: दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मिश्रा ने कहा कि किसी का कद पार्टी से बड़ा नहीं होता। उन्होंने पार्टी के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करने की बात कही। इससे पहले टिकट कटने पर समर्थकों ने हाईवे पर चक्का जाम किया था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर व्यापारियों के और उद्यमियों के साथ खड़ी है। श्री सिलावट रविवार को कैट द्वारा आयोजित व्यापार उद्योग संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं के लिए हर 3 माह में बैठकों का आयोजन किया जाएगा और मंत्री ने सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। भोपाल के सिंधु भवन में कल आदिवासी जैन जी फेस्ट का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के आदिवासी सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र की आदिवासी रैपर माही जी की प्रस्तुति कार्यक्रम का

0: मुख्य आकर्षण रही। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगवार ने आदिवासी युवाओं को बेहतर शिक्षा और अवसर देने पर जोर दिया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने सुर्खी में जल्द शुरू होने वाली देहरा बांध परियोजना की जानकारी दी। इस परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे 23,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। ग्वालियर में चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 21 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। राज्य साइबर सेल ने इस मामले में 1,82,00,000 रुपए फ्रीज कराए हैं। ठगों ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर संपर्क किया था। शुरुआत में अच्छा रिटर्न दिखाकर भरोसा जीता और जांच में सामने आया कि यह गिरोह विदेश से संचालित हो रहा है। रकम को छिपाने के लिए 12 लेयर में 19,000 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। भोपाल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। प्रदेश में करीब 60% हिस्से में मानसून के बादल गायब हैं। अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर के एयरपोर्ट परिसर में कल एक पेड़ माँ के नाम अभियान में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने हिस्सा लिया। मंदसौर के सांदीपनी विद्यालय में भी एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के तहत पौधरोपण का आयोजन किया गया। आगरमालवा के साथ नीमच के 6,878 पशुपालकों को दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत प्रेरित किया जाएगा। छतरपुर के शासकीय सांदीपनी विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और रीवा के डाकघर संभाग में पीएलआई और आरपीएलआई व्यवसाय के लिए डायरेक्ट सेल्स एजेंट चयन के लिए 27 से 31 जुलाई तक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

648 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं बसंत बहार फिल्म की इस भक्ति रचना से। आवाज है मन्ना डे की, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

मुगले आजम फिल्म का गीत अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। शकील बदायनी के बोल हैं और धुन बनाई है नौशाद ने।

मन्ना डे की आवाज में लीजिए अब सुनिए सीमा फिल्म का गीत। शब्द हैं शैलेंद्र के और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए मुकेश की आवाज में सारंगा फिल्म का गीत। इसे लिखा है भरत व्यास ने और धुन बनाई है सरदार मलिक ने।

प्राण जाए पर वचन न जाए। इस फिल्म से सुनिए एसएच बिहारी का लिखा और ओपी नैयर का, ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में, आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

गंगा जमुना फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी की बोल हैं और नौशाद का संगीत।

हकीकत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी देर में दिल्ली से रिले करेंगे समाचार प्रभात।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
4: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन

0: दिन सही समय पर अलग होगा। उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6

0: लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विम्बलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और UAE को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8:30 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शुरुआत हम कर रहे हैं हम दोनों फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, जयदेव का संगीत।

लीजिए अब सुनिए अनुपमा फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में। कैफी आज़मी के बोल हैं, संगीत दिया है खुद हेमंत कुमार ने।

अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म गाइड से। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार एस डी

इस गीत के बाद अब सुनिए झूलती फिल्म का गीत, आवाज है लता मंगेशकर की, शैलेंद्र ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है हमराही। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म से, जिसे गाया है मन्ना डे ने। इंदिवर के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

और लीजिए अब पेश है आखिरी नगमा अमर प्रेम फिल्म से, आवाज़ है किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन, राग है जौनपुरी। विलंबित ख्याल के बोल हैं बाजे झननन और द्रुत ख्याल के बोल हैं चुम छनन बिछुआ बाजे। संगीतकार हैं तबले पर ओमकार गुलवादी और हारमोनियम पर गोविंद पटवर्धन।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुना विदुषी पद्मा तलवलकर का गायन। यह आकाशवाणी इंदौर है। अब हम रिले करेंगे जिले की चिट्ठी भोपाल से।
1: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है गुना जिले की चिट्ठी। आलेख रोहित गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात शिक्षा की। बजरंगगढ़ के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की कक्षा 5 में पढ़ रहे पात्र विद्यार्थी 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 28 नवम्बर को आयोजित की जाएगी। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं जनकल्याण की। मुख्यमंत्री जनकल्याण 2.0 योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीते दिनों राज्य के 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। गुना जिले के 239 श्रमिक परिवारों के खातों में भी 5,36,00,000 रुपए सीधे भेजे गए। बमौरी के भौरा में करीब 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना से करीब 225 गांवों के 2,00,000 से अधिक लोगों को बेहतर और निर्बाध बिजली मिलेगी। गुना जिले के मौसम का हाल भी लगातार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई है। 1 जून से 9 जुलाई तक जिले में औसतन 270 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चांचौड़ा, कुंभराज और मकसूदनगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दी गई है। इसी बीच समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल भी हुई। कुंभराज के बिरियाई गांव में रात्रि चौपाल और रोजगार सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान के निर्देश दिए गए। 11 युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र भी इस मौके पर सौंपे गए। अब बात करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों से जुड़ी आपत्तियों के निराकरण के लिए 13 से 15 जुलाई और 21 से 24 जुलाई तक विभिन्न बैठकों का आयोजन जिले में किया जाएगा। संबंधित आवेदिकाओं को अलग से सूचना भेजी जाएगी और सभी को तय समय पर उपस्थित रहने को कहा गया है। खेती किसानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 अगस्त तक की जाएगी। जिले में इसके लिए 4 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकृत किसान स्लॉट बुकिंग के अनुसार अपनी उपज बेच सकते हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश से बचाव की सलाह जारी की है। अधिकारियों ने कहा कि सांप काटने पर झाड़ फूंक या घरेलू इलाज न करें। ऐसे मामलों में तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे। समय पर इलाज मिलने से जान बचाई जा सकती है। शहर की यातायात व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सड़क दुर्घटनाएं रोकने और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए भारी माल वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही ऐसे वाहन शहर में प्रवेश कर सकेंगे। दिन के समय नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए एक और अच्छी खबर है। प्रदेश के पर्यटन बोर्ड की पर्यटन क्विज 2026 प्रतियोगिता के लिए स्कूल 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 7 अगस्त को होगी। विजेता टीम राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी और सफल टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान जिले में 1,67,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा बीते दिनों पिलाई गई, जिसके लिए 1,513 पोलियो बूथ बनाए गए थे। स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर भी लोगों को जागरूक किया। वहीं दूसरी तरफ स्वनिधि महोत्सव में पथ विक्रेताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। इसी दौरान सिंघाड़ी रोड पर आधुनिक फल एवं सब्जी मंडी के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बीना गुना रुठियाई मेमू एक्सप्रेस सेवा शुरू हो गई है। इस नई ट्रेन से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले में युवा संगम कार्यक्रम में बीते दिनों 269 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 191 युवाओं को निजी कंपनियों ने रोजगार के ऑफर लेटर प्रदान किए। इसके साथ ही कई हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए ऋण और आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। और अंत में एक जरूरी अपील। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री साझा करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी खबर, फोटो या वीडियो को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। गुना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख रोहित गोस्वामी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। मीडियम वेव
1: 648 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं प्यासा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और एसडी बर्मन का संगीत।

मुझे जीने दो। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, जयदेव का संगीत।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वक्त फिल्म का गीत। साहिल लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला है रवि ने।

अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में कटी पतंग फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

किशोर कुमार की आवाज में लीजिए अब सुनिए कोरा कागज फिल्म का गीत। बोल हैं एमजी हशमत के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

इस समय आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। किशोर कुमार की आवाज में लीजिए अब सुनिए सफर फिल्म का गीत। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: मेरे हुजूर फिल्म का गीत लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: जितने सितारे हैं वो भी शर्मा

हाथी मेरे साथी। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद पक्षी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जगजीत सिंह की आवाज में लीजिए अब सुनिए अर्थ फिल्म का गीत। कैफी आजमी के बोल हैं कुलजीत सिंह का संगीत।

और लीजिए श्रोताओं, पेश है आखिरी नगमा। फिल्म है मासूम, आवाज़ लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, आगे के प्रसारण होंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अदनान सामी, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म माय नेम इज़ खान का गीत। गीत निरंजन का था और इसे संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए फिल्म मौसम का गीत हंसराज हंस की आवाज़ में। इरशाद कामिल के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

अनजाना अनजानी। इस फिल्म का गीत सुनिए राहत फ़तेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में। गीत विशाल ददलानी का है और संगीत है विशाल शेखर का।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, आवाजें हैं आशा भोसले और येसुदास की, और फिल्म का नाम है अलग अलग।

आवाज में। गीत लिखा था अनजान ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए आरती मुखर्जी की आवाज में फिल्म मासूम का गीत। बोल गुलजार के हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म सीमा का गीत। गीत शैलेंद्र ने लिखा था और इसे संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।

दिल एक मंदिर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। श्री मिश्रा ने कहा कि किसी का कद पार्टी से बड़ा नहीं होता। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से से मानसून के बादल गायब हैं। अगले 5 दिन तक कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं है और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा जिसका प्रसारण भारतीय समयानुसार 12:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, इसमें आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम पूरी करते हैं और पहला पत्र शामिल कर रहे हैं रेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश, कार्तिक, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और खुशी वाणी की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की। तीसरी कसम फिल्म का गीत।

अगला गीत आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ मुकेश ने गाया है। फिल्म का नाम है धर्म करम। सुनना पसंद किया है कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। कांचल पुणे से महेश हजारे, मितांशु हजारे, आदित्य हजारे। इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे और उनके परिवार के सदस्य।

ये चिट्ठी आई है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की पसंद है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष की। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री की। सुनना पसंद किया है आदमी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी का गाया हुआ। शकील बदायनी ने गीत रचना की है और धुन बनाई नौशाद ने।

सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया। कवर कॉलोनी बड़वाह से श्री प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति श्रीमाली और शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली की। घंटा चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। बहु बेगम फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में है। साहिर के बोल हैं और रोशन की धुन।

अगले गीत की फरमाइश शामिल कर रहे हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव की, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी और दिशा और लभी श्रीवास्तव की। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर की। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा की। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की पसंद है। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये की। सुनना पसंद किया है उपकार फिल्म का गीत मन्ना डे का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत लिखा है, कल्याण जी आनंद जी की धुन है।

0: मन्ना डे के गाए फिल्म उपकार के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: मालवा की शान,
7: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग पूरिया धनाश्री। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: भारत में कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। नमो ऐप और MyGov पोर्टल के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव का फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमी कंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह अब से कुछ देर में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी दोपहर करीब 2:30 बजे नामांकन दाखिल करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। आशुतोष तिवारी का नॉमिनेशन कराने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी दतिया जा रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है जिससे तेज बारिश की संभावना है। आज 22 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में धूप खिली रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है।
1: श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा। श्रोताओं, अच्छा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी रसोई और घर को जितना हो सके केमिकल फ्री बनाना चाहिए। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड की बजाय ताज़ा घर का भोजन खाएं। सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी या ताज़े फलों का रस अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। मौसमी फल और हरी सब्जियों को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं। मैदा, अत्यधिक चीनी और जंक फूड के सेवन से बचें। भोजन बनाने के लिए ताज़ी भोजन सामग्री और पारंपरिक मसालों का उपयोग करें। प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म भोजन रखने से बचें। स्टील, कांच और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए, सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोता सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। वक्त हो गया है भेंट वार्ता का। आइए अब सुनवाते हैं आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से मनीष गजभिये जी की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आयुर्वेद से हम सभी परिचित है, यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद किस प्रकार कार्य करता है और इसमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर ऋषि मिश्रा। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: ऋषि जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है और यह किस तरह से काम करती है।
2: यह चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि पुराने समय में भी बहुत लाभदायक थी और आज के समय में भी बहुत लाभदायक है
1: जी।
2: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वह है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम। इसका मतलब है हम स्वस्थ व्यक्तियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: और साथ ही अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके रोग का निर्मूलन कैसे पकड़ सकते हैं
1: जी जी जी।
2: इसमें आपको क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को रोगों से और क्योर कैसे कर सकते हैं
1: जी। ऋषि जी आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है तो लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, आयुर्वेद के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है इन बीमारियों को।
2: जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और अभी के समय में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों रोगी हो रहे हैं
1: जी।
2: और यह लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज ज्यादा अपने को देखने में आ रही है, जैसे मोटापा हो गया, बीपी हो गया, ये बीमारियां ज्यादा देखने में आ रही है और ये बहुत कॉमन होती जा रही है
1: जी।
2: इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है और हमको इसमें ऋतुचर्या दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ऋतुचर्या और दिनचर्या के पालन करने से हमारे जो रोग हैं ये हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी तीव्रता को भी कम किया जा सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, ये आपने बात करी जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की, तो ये जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर है क्या इसका इलाज भी संभव है आयुर्वेद में।
2: हाँ जी बिल्कुल, इसका वर्णन है आयुर्वेद में। डायबिटीज को हम मधुमेह कहते हैं जो कि प्रमेह के अंतर्गत बताया गया है और उसके अंदर उसके कारणों को भी बताया है और उसका निदान भी बताया है, इलाज भी बताया है
1: जी। डॉक्टर साहब, आजकल लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है तो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो उसमें आजकल जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है मानसिक स्वास्थ्य का भी, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का भी इस चिकित्सा पद्धति में इलाज संभव है।
2: हाँ जी बिल्कुल है, और हमारे प्रकृति में ऐसी कई वनौषधियां हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। जैसे आपको शंख पुष्पी हो गई, ब्राह्मी हो गई, जटामांसी हो गई, ऐसे कई मेद्य द्रव्य बताए गए हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हैं। साथ ही आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा भी है जिसमें शिरोधारा प्रक्रिया यह इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें शिरोवस्थी होती है, शिरो अभ्यंग होता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है
1: जी। जी
2: आयुर्वेद में योग का भी वर्णन है, योग में आपको ब्राह्मी प्राणायाम होता है, इससे भी लाभ मिल सकता है। तो मतलब बहुत तरीके से हम मानसिक चिकित्सा इसमें हम दे सकते हैं
1: बिल्कुल
2: मानसिक रोगों में।
1: डॉक्टर साहब, अब जैसा आपने बात करी पंचकर्म की, तो आजकल पंचकर्म क्रिया का भी नाम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, तो क्या यह पंचकर्म जो प्रक्रिया है उससे किसी भी तरह के पेशेंट को किस तरह का लाभ मिलता है इस पद्धति के द्वारा।
2: पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है। हम आयुर्वेद में ये देखते हैं कि रोगी के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है जिसमें वात पित्त कफ हमारे मुख्यतः दोष माने गए हैं और ये अपने सही प्रमाण से ऊपर रहते हैं तो वो दोष के लक्षण दिखाते हैं। तो इन दोषों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो पंचकर्म है। इसमें कुछ हद तक हम शमन चिकित्सा के रूप में या रोगों को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए भी प्रयोग करते हैं और ये आत्यायिक चिकित्सा के रूप में भी काम आती है, मतलब एक्यूट पेन रिलीफ करने में भी मदद करती है
1: जी।
2: पंचकर्म को हम मुख्यतः तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन स्वेदन जिसमें हम ऑयलिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, उसका भी बहुत सारा अलग विस्तृत वर्णन है जिसमें अलग अलग रोग के हिसाब से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। मुख्यतः प्रधान कर्म में आते हैं जो पांच मुख्य कर्म है, उसमें वमन आता है मेडिकेटेड वोमिटिंग, दूसरे नंबर पर आता है विरेचन मेडिकेटेड लूज मोशन, फिर तीसरे नंबर पर आती है बस्ती चिकित्सा जिसमें हम ऑयल और काढ़े को एनस में इंट्रोड्यूस करते हैं। चौथे नंबर पर आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण के अंदर हम ब्लड लेटिंग करते हैं, कहीं किसी पार्ट में अगर हमारे को कहीं ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है या वहां घाव बन रहा है तो उस जगह से हम दूषित रक्त को निकालते हैं।
1: जी।
2: पांचवें नंबर पर आता है नस्य प्रक्रिया। नस्य प्रक्रिया यानी नाक में मेडिकेटेड ऑयल को, कुछ चून को या काढ़े को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक चिकित्सक के देखरेख में, और वो प्रक्रिया हमको बहुत अच्छा लाभ देती है। ऐसे ये पांच मुख्य कर्म पंचकर्म में आते हैं। इसके बाद पश्चात कर्म होता है। जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद में जो पश्चात कर्म में धूमपान वगैरह होता है, संसर्जन कर्म होता है, उसको फॉलो किया जाता है।
1: जी जी। तो ये आपने पंचकर्म की बात करी, तो पंचकर्म करने के लिए क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य है या वह घर में रहकर भी इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सकते हैं?
2: नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको चिकित्सक की देखरेख में ही कराना है, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी आसान नहीं है। इसमें चिकित्सक उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि उसके वाइटल्स क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो प्रोसीजर के लायक है या नहीं है, इस प्रकार से वो डिजाइन करता है एक चिकित्सक। तो इसलिए इसको हॉस्पिटल में कराना या एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में कराना ज्यादा उचित होगा।
1: जी जी जी। अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पद्धति में खानपान की भूमिका क्या रहती है?
2: हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आहार हमारी सबसे पहली चिकित्सा है। आहार से ही हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमको एसिडिटी हो रही है, हमको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हम उसमें अगर तीखे पदार्थ लेते हैं तो वो उसको और एग्रीवेट करता है। उसी के बदले में अगर हमने उसमें थोड़ा सा मधुर द्रव्य दिया तो उसको सबसाइड कर देगा। तो आहार का तो बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद में, और आहार का महत्व भी बहुत कुछ है इसमें।
1: जी जी जी। हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो बदलती हुई जीवन शैली है उसमें आहार का विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि आहार के माध्यम से जैसा भी हमें डॉक्टर साहब ने भी बोला, काफी हद तक हम चीजों को या बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो यह है कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी जारी रख सकते हैं?
2: ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। आज के दौर में देखने में आता है हमारी प्रैक्टिस लाइन में कि रोगी पहले से ही कुछ मेडिकेशन करता हुआ आ रहा है और वो डिपेंडेंट भी है उसके ऊपर। अब वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा स्विच हो जाऊं या मैं उसमें कुछ और अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं, तो बिल्कुल आयुर्वेद की उसमें मदद लेनी चाहिए और पैरेलल में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अपने डॉक्टर को बता दीजिए और उनके संपर्क में रहिए, और फिर आप टैपरिंग डोज में धीरे धीरे अपनी मॉडर्न मेडिसिन को आप रिड्यूस करते जा सकते हैं और आयुर्वेद को आप लेते जाएं। ऐसे करके आपका स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न जो जहन में आ रहा है वो यह आ रहा है कि आयुर्वेद के क्या कोई साइड इफेक्ट है?
2: इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, देखिए किसी भी चीज की अगर अति मात्रा लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे हम डे टू डे लाइफ में शक्कर ज्यादा खा रहे हो तो उसका भी हमको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होने लगेगा। ऐसे ही आयुर्वेद के चिकित्सा है, इसको आपको उचित मात्रा में, उचित प्रमाण में अगर लेंगे तो लाभदायक है। अनुचित प्रमाण में ले रहे हैं और गलत तरीके से ले रहे हैं तो उससे फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा। जो कि आपको अगर चिकित्सक परामर्श देते हैं तो वो उस समय वर्णित करते हैं कि इसको इस तरीके से इस मात्रा में लेना है तो वो लाभदायक बनेगी। जी
1: जी जी जी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आयुर्वेद में ऑपरेशन के माध्यम से भी इलाज संभव है किसी बीमारी का?
2: बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आयुर्वेद सिर्फ औषधि सेवन करने की विधा नहीं है, इसके अंदर ऑपरेशंस भी बताए गए हैं। इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य सुश्रुत हैं, जिनको मॉडर्न के डॉक्टर भी अपना फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, और हमारे यहाँ आज भी कई बीमारियों के ऊपर सर्जरी होती है, जैसे मुख्यतः पाइल्स के अंदर, भगंदर यानी फिस्चुला, इसके अंदर की जाती है सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेडिसिन से पहले क्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा देर हो गई है और बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया है डिजीज, तो फिर सर्जरी भी की जाती है जिसमें क्षार सूत्र पद्धति से इलाज किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को अक्सर देखा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, स्वयं से ही दवाई ये सोच के ले लेते कि शायद आयुर्वेद में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं बताना चाहूंगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन की चिकित्सा विधा नहीं है, ये दिखती आसान है पर इसके अंदर बहुत कुछ अध्ययन करने की जरूरत होती है। हम एक औषधि के अंदर रस गुण वीर विपाक सब कुछ देख रहे होते हैं और एक आयुर्वेद चिकित्सक अपने 5.5 साल की पढ़ाई करके एक बैचलर डिग्री प्राप्त करता है। आज के समय में इसमें स्पेशलाइजेशन होने लग गया है, इसमें MD होने लग गई है, तो स्पेशलाइजेशन होने से और क्वालिटी इनहेंस हुई है। तो

0: ठीक होने की बारी आ जाएगी।
1: जी
0: इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज के दौर में इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए हैं रील्स वगैरह, जिसमें लोग अपना उधर से देख के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिस में देखने में आ रहा है। तो ये वही श्रोता है जो सेल्फ मेडिकेशन पर चले जा रहे हैं, या वो किसी रील्स के कारण देख रहे हैं या ले रहे हैं दवाइयों को, यह अनुचित है। इसमें आप उस विंडो पीरियड, वो जो पीरियड है, जो शुरुआती पीरियड है जिसमें हम जल्दी ठीक कर सकते थे, वो गंवा देते हैं
1: जी,
0: और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर के लिए भी आप चुनौती बढ़ा रहे हैं और अपने लिए भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मुझे कहना है कि ये सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल ना करें। हमारे आसपास चिकित्सक अवेलेबल हैं और उनको दिखा के आप चिकित्सा परामर्श लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी बहुत अच्छी बात की आपने, और हम अपने तमाम श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जो दौर है उसमें बिल्कुल भी आप किसी तरह की रील को या किसी तरह की साइट पे जाकर स्वयं से उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर है, डॉक्टर से परामर्श लें और तभी आप अपना इलाज करें। कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वह किस तरह से अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से?
0: आयुर्वेद एक आपको बहुत अच्छा साइंस मिला है, और उस साइंस में क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों चीज़ें मेंशन है। तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकते हैं अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। मुख्यतः आहार पर अपना ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और वही हमको नुकसान दे रही है। दूसरा, हमारी निद्रा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: उसको भी प्रॉपर लेना है। ये नहीं कि अपने कार्य के कारण आप निद्रा को प्रॉपरली ना लें तो फिर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो आहार और निद्रा पे विशेष रूप से ध्यान रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कार्य क्षमता अच्छी रहेगी।
1: डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वह हमारे श्रोताओं के काम आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से मनीष गजभिये की ये बातचीत सुनी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का, और इसी क्रम में आज का विषय है कॉन्टैक्टलेस हेल्थ टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसके माध्यम से रोगी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बिना सीधे संपर्क के प्राप्त की जा सकती है। इसका पर्पस हेल्थ सर्विसेज को अधिक सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और सुलभ बनाना है। इस टेक्नोलॉजी में सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, स्मार्ट उपकरण और वायरलेस तकनीक का उपयोग करके रोगी की निगरानी, जांच और परामर्श किया जाता है। इसमें डॉक्टर को मरीज से हर बार मिलने की आवश्यकता भी नहीं होती। वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से मरीज डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। वेयरेबल डिवाइसेस कॉन्टैक्टलेस हेल्थ टेक्नोलॉजी में स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड भी आते हैं, जो हृदय गति, रक्त में ऑक्सीजन और नींद और शारीरिक गतिविधियों की निगरानी करते हैं। संपर्क रहित थर्मामीटर में बिना छुए शरीर का तापमान का पता लगाया जा सकता है और घर बैठे रोगी के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी भी की जाती है। तो अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है हेल्थ टिप्स का। प्राकृतिक चीज़ों को अपने जीवन में उपयोग करें, तनाव कम करने के लिए योग का सहारा लें, बारिश में भीगने पर शरीर को अच्छी तरह सुखाएं। त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, फंगस, संक्रमण या कोई समस्या लगातार बनी रहे तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें। बादलों के दिनों में भी बाहर जाते समय सनस्क्रीन का उपयोग करें। अपनाएं ऐसी छोटी छोटी आदतें जो आपको रखें स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान।

0: आशा है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिर मिलने के वादे के साथ डीजे आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा को इजाजत। नमस्कार।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत,
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

संवैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पीराजी मंडोर के गाए मालवी लोकगीत। ये है निर्गुण भजन।

पीरा जी मंडोर के गाए मालवी लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। यह है निर्गुण भजन।

नीराजी मंडोर के गाए इस निर्गुण भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में अविनाश त्रिपाठी के गाए कुछ भजन। आरंभ कर रहे हैं तुलसीदास की इस रचना के साथ।

अविनाश त्रिपाठी के गाए भजन आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए सूरदास जी की रचना

सूरदास की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे अविनाश त्रिपाठी के गाए कुछ भजन। ये प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है एक अंतराल का।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया नया दौर फिल्म का गीत है। ओपी नैयर ने धुन बनाई है साहिर के बोल।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: मन्ना दे और साथियों का गाया फिल्म श्री 420 का ये गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और जीसीसी निवेश पर मंथन होगा। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख टेक कंपनियां, निवेशक और नीति विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा के बल पर दुनिया में नई पहचान बना रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में कृषि, खनिज और वनों की पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर डिफेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर है। एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की।
2: इंदौर आईटी पार्क सुपर कॉरिडोर, इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। यह सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूं।
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव मौजूद रहे। वहीं अब से कुछ देर बाद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंच रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा चलाए जा रहे दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पशुपालकों के घर पहुंचेंगे और नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण और सेक्स सॉर्टेड सिमिन के बारे में जानकारी देंगे। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 18 जुलाई तक चलने वाले 6 दिवसीय अभियान के दौरान नर्मदापुरम, बाबई, पिपरिया, वनखेड़ी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा और केसला विकासखंड के 11,595 पशुपालकों परिवारों तक विभागीय अमला पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि सर्वांगीण विकास प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करता है। इससे राष्ट्र की प्रगति को नई दिशा मिलती है। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश इस प्रेरणादायक भावना के साथ भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इनमें कहा गया है कि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना, युवा पीढ़ी की रक्षा और पोषण करना, राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का निरंतर कर्तव्य है। प्रदेश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से से मॉनसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नया मौसम का सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, थार और अलीराजपुर जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में नगर पालिका द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर जल जनित और बैक्टीरिया जनित रोगों की रोकथाम करना है। मंडला जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों की समस्याओं को सुना गया। जबलपुर मंडल के रेल मंडल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने जबलपुर पुणे वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कल जबलपुर से इटारसी के बीच औचक निरीक्षण किया। भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा कल आगरमालवा जिले के कानन में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में

0: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्र गिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे लिए नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र

0: में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर का गाया हुआ, आर डी बर्मन की धुन थी और आनंद बख्शी ने गीत लिखा था। आनंद फिल्म का यह गीत है, मन्ना डे ने गाया है, योगेश ने गीत लिखा है, सलिल चौधरी की धुन है।

0: चले जाए अकेले कहां जिंदगी।
1: मन्ना डे के गाए फिल्म आनंद के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव का फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।

0: विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने आज नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डो में 6330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया और लॉर्ड्स में खेले जा रहे एकमात्र महिला क्रिकेट इस मैच में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए 4 विकेट की जरूरत है। 457 रन के लक्ष्य के जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बनाए थे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। शाम 6:40 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम आजकल प्रसारित करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन का समय रहेगा शाम 6:45 का। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:00 प्रसारित करेंगे। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 पर मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग पूर्य धनाश्री आप सुनेंगे। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा लोक रंग। ये थी जानकारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण डीटीएच पर जारी है।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02 होते हैं। नीचे प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे पीराजी मंडोर के गाए कुछ निर्गुण भजन।

0: मीडियम वेव 462.6 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी से।
1: साथियों, मैं आपका दोस्त राज
2: और मैं माधवी, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आकाशवाणी पर युववाणी।
1: साथियों, आज के युववाणी प्रोग्राम में हम कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं, जिसे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न, और रोज़ाना की तरह हम नवनीत कहानियाँ, नवनीत योजनाएँ, नवनीत जानकारियाँ आप सभी के लिए समक्ष आप सभी के लिए लेकर आते हैं। पर साथियों, भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थनी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आज उस विषय पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। उसी के साथ हमारे देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान इस वक्त चल रहा है, तो पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है हम सभी के लिए, उस पर भी हम ढेर सारी चर्चा करने वाले हैं। पर उसके पहले जान लेते हैं साथियों आज के सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला किस कला के लिए जाना जाता है?
2: और आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के रखेंगे, और इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको इसके जवाब ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम के पहले गीत के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पूरे देश में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई है। ये निर्णय भारत और कतर के बीच वर्षों से चले आ रहे आत्मीय संबंधों और पारस्परिक सम्मान को दर्शाता है।
2: राष्ट्रीय शोक के दौरान देश भर में उन सभी सरकारी भवनों पर जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: साथियों, ये किसी महान व्यक्तित्व के प्रति राष्ट्र की ओर से सम्मान और संवेदना व्यक्त करने की एक परंपरा है। दोस्तों, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को आधुनिक कतर के निर्माण का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। उनके नेतृत्व में कतर ने ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल विज्ञान और आधारभूत संरचना जैसे अनेकों क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है।
2: उन्होंने अपने देश को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है और विकास की ऐसी दिशा दी है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी एक दूरदर्शी और प्रेरणादायी नेता थे। उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से कतर को विकास और समृद्धि के नए आयाम दिए।
2: प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार, कतर के नेतृत्व और वहाँ की जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की है।
1: विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत सरकार की ओर से संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू कतर जाकर शोक संदेश देंगे। वो दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
2: ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत मित्रता और विश्वास का प्रतीक है। साथियों, भारत और कतर के रिश्ते केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है। व्यापार, ऊर्जा, निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी कई क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है।
1: कतर में रहने वाला विशाल भारतीय समुदाय भी इन संबंधों और अधिक सशक्त बनाता है और यही कारण है कि ऐसे अवसरों पर भारत पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने मित्र राष्ट्र के दुख में सहभागी भी बनता है।
2: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल समझौताओं और बैठकों से नहीं बनते हैं, बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और मानवीय संवेदनाओं से भी मजबूत होते हैं। जब एक देश दूसरे देश के दुख में उसके साथ खड़ा होता है, तो यही भावना वैश्विक भाईचारे और शांति के संदेश को आगे ले जाती है।
1: साथियों, आइए हम भी कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनकी आत्मा की शांति की कामना करें। साथ ही कतर की जनता और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करें।

दोस्तों, माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, वो बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित कर देती है। ठीक उसी तरह एक पेड़ भी हमें बिना किसी अपेक्षा के जीवन दान देता है। वो हमें शुद्ध हवा, फल फूल, छाया, औषधियाँ और प्रकृति का संतुलन प्रदान करता है। इसलिए साथियों, जब हम अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा या फिर एक वृक्ष लगाते हैं, तो ये केवल पौधारोपण नहीं होता, बल्कि जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारी

0: अहम प्रतीक बन जाता है।
1: साथियों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। गर्मियां लगातार अधिक गर्म होती जा रही हैं और बारिश का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में पेड़ लगाना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता बन चुका है।
0: तो साथियों, इसी सोच के साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान और अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और उसकी देखभाल ताउम्र करें। वो संकल्प भी ले कि हम उसकी देखभाल करते ही रहेंगे,
1: क्योंकि केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे एक मजबूत पेड़ बनने तक संभालना भी उतना ही आवश्यक है।
0: साथियों, हम सभी युवाओं की भूमिका इस अभियान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉलेज, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन यदि मिलकर इस अभियान को जन आंदोलन का रूप बना दे तो आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा और स्वच्छ भारत मिल सकता है।
1: आप अपने जन्मदिन, अपने माता पिता के जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या किसी भी विशेष अवसर पर उपहार देने की जगह एक पौधा लगाकर उस दिन को और भी यादगार बना सकते हैं। नीम, पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमलतास, अर्जुन या अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधे पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं।
0: साथियों, स्थानीय जलवायु के अनुसार पौधों का चयन करना उनकी अच्छी वृद्धि में काम करने जैसा है। और साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति में भी वृक्षों को पूजनीय माना गया है। पीपल, बरगद, तुलसी या फिर नीम जैसे पौधों का धार्मिक और सांस्कृतिक और औषधीय महत्व सदियों से रहा है।
1: हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को परिवार का हिस्सा माना और आज आवश्यकता है कि हम भी उसी परंपरा को और आगे ले जाएं।
0: तो दोस्तों, आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि केवल एक दिन के लिए ही नहीं बल्कि जीवन भर प्रकृति की रक्षा करेंगे।
1: तो अपनी माँ यानी कि धरती माता के सम्मान में एक पौधा अवश्य लगाएं, उसकी नियमित देखभाल करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
0: याद रखिए साथियों, माँ जीवन देती है और पेड़ हमें जीवन से बचाते हैं, कई सारे ऐसे उलझनों से बचाते हैं जैसे बाढ़ आना या फिर सूखे की कमी होना। आप सभी ने देखा होगा क्योंकि पेड़ हैं, हरियाली है, खेत खलियान है, तो हमारे घर में अनाज भी है। तो माँ और पेड़ दोनों का सम्मान कीजिए।

0: दोस्तों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 अब अपने अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है। लगभग एक महीने तक चले इस रोमांचक सफर ने दुनिया की 48 टीमों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, लेकिन अब केवल 4 टीमें बची हैं जो विश्व कप चैंपियन बनने का सपना संजोए हुए है।
1: इस विश्व कप में कई यादगार मुकाबले, चौंकाने वाले उलटफेर और शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन देखने को मिले हैं। यही कारण है कि इस बार का जो टूर्नामेंट है, फुटबॉल इतिहास के सबसे रोमांचक विश्व कपों में से एक में गिना जा रहा है।
0: दोस्तों, आइए जान लेते हैं क्वार्टर फाइनल के नतीजे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। मजबूत और संतुलित टीम के रूप में खेल रही फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा कर लगातार दूसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही मैच पर नियंत्रण बनाए रखा और शानदार तालमेल के साथ जीत दर्ज की।
1: दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम जैसी मजबूत टीम को 2-1 से हराया। स्पेन की तेज पासिंग, बॉल पर शानदार नियंत्रण और युवा

0: खिलाड़ियों के आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये खिताब की सबसे बड़ी दावेदारी में से एक यही टीम है।
1: वहीं तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। निर्धारित समय तक संघर्ष के बाद इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय से 2-1 से जीत दर्ज कर अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली।
0: चौथे क्वार्टर फाइनल में मजबूत विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर अपना खिताब बचाने की उम्मीद को बरकरार रखा। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने दबाव में भी शानदार प्रदर्शन किया और खेल का अच्छा सा नेतृत्व भी दिखाया।
1: साथियों, अब विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो चुके हैं। पहला सेमीफाइनल कल यानी 14 जुलाई को फ्रांस के स्पेन के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम का आक्रमण और मिडफील्ड बेहद मजबूत है, इसलिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं माना जा रहा है।
0: दूसरा सेमीफाइनल 15 जुलाई को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में होगा।
1: साथियों, दोनों टीमों के बीच पुरानी प्रतिद्वंदी एक संघर्षशील टीम बनी हुई है, इसलिए दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं।
0: इन दोनों मैच के जो विजेता हैं वो 19 जुलाई को विश्व कप फाइनल खेलेंगे।
1: बिल्कुल साथियों, जबकि हारने वाली टीमें 18 जुलाई को तीसरे स्थान के लिए आमने सामने होंगी।
0: दोस्तों, फीफा विश्व कप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये दुनिया को जोड़ने वाला एक ऐसा उत्सव है जहां अलग अलग देशों, भाषाओं और संस्कृति के लोग खेल भावना के माध्यम से एक मंच पर आते हैं।
1: साथियों, युवाओं के लिए भी ये टूर्नामेंट कई सीख छोड़ता है, जैसे अनुशासन, टीम वर्क, नेतृत्व, धैर्य, निरंतर मेहनत और कभी हार ना मानने का जज्बा। मैदान पर जीत उसी की होती है साथियों जो आखिरी मिनट तक पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करता रहता है।
0: अब पूरी दुनिया की निगाहें इन दो सेमीफाइनल मुकाबलों पर है। सबका सवाल बस यही है कि क्या फ्रांस एक बार फिर विश्व विजेता बनेगा,
1: और क्या स्पेन अपना सुनहरा दौर लौटाएगा, और क्या इंग्लैंड वर्षों का इंतजार उसका जीत का खत्म होगा। खैर, अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का इतिहास रचेगा, ऐसे कई सारे सवाल हम सभी के जहन में साथियों, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले कुछ दिनों में मिल ही जाएंगे।

0: माधवी, आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत से युवा नए माहौल में जल्दी सहज नहीं हो पाते, चाहे फिर कॉलेज हो या फिर नौकरी या फिर शादी को ही हम ले लें या फिर कोई नया परिवार। समायोजन यानी एडजस्टमेंट एक बड़ी चुनौती सा बन गया है।
1: सही कह रहे हो तुम राज। आज की पीढ़ी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी तो है, लेकिन जब अचानक वातावरण बदलता है तो उन्हें अपनी दिनचर्या, लोगों और उपेक्षाओं और लोगों की हर चीज़ को समझने में बहुत समय लग जाता है।
0: मुझे लगता है कि इसकी एक वजह यह भी है कि आज के युवा अपनी पहचान और फिर स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जब नया माहौल उनकी आदतों से अलग होता है तो उन्हें असहजता महसूस ही हो जाती है।
1: हाँ, और इसी के साथ साथ आज का जीवन बहुत तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर सब कुछ तुरंत और आसान दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक जीवन में नए लोगों के साथ तालमेल बैठाने में धैर्य और समय लगता है। नए वातावरण में कठिनाई क्यों होती है, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है।
0: जैसे किसी नए ऑफिस में जाने पर व्यक्ति को नई टीम, नई कार्यशैली और फिर नई जिम्मेदारियों को समझना पड़ता है। अगर सहकर्मी सहयोग ना हो तो समायोजन यानी फिर एडजस्टमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है।
1: ऐसे ही नए कॉलेज में भी छात्र छात्राओं को ये समस्या होती है। वे अपने पुराने दोस्तों, स्कूल और परिचितों के माहौल से निकलकर एक बिल्कुल नई दुनिया में आते हैं। शुरुआत में अकेलापन और असुरक्षा महसूस होना जो हर बच्चे के लिए स्वाभाविक है, वो उन्हें भी होता है।
0: और मुझे तो ऐसा भी लगता है माधवी के इस तरह

0: शादी के बाद जब कोई लड़की अपने ससुराल में जाती है तो उसके लिए परिवार के नए सदस्यों का व्यवहार, उनकी परंपराएं और उनकी दिनचर्या को समझना आसान नहीं होता। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें या उनका आदर करें तो ये बदलाव धीरे ही धीरे अपने जीवन में आ ही जाता है। तुम क्या कहती हो?
1: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। जब व्यक्ति को लगता है कि नया वातावरण उसकी भावनाओं और ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहा, तो वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगता है। यही भावना समायोजन की समस्या को बढ़ाती है, यानी कि एडजस्टमेंट को बढ़ाती है। दोनों पक्ष कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस समय ये सवाल सबसे ज़रूरी लगता है।
0: साथियों, हमारा मानना है कि एडजस्टमेंट केवल व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं है, जिस वातावरण में वह जा रहा है या फिर जा रही है, वहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे उसे अपनापन महसूस ज़रूर कराएं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। नए व्यक्ति को भी खुलकर संवाद करना चाहिए। यदि उसे किसी बात में कठिनाई हो रही है या उसे संकोच हो रहा है, तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि संकोच की बजाय विनम्रता से अपनी बात रखनी चाहिए। ये सिर्फ नए घर में नहीं, नए ऑफिस में नहीं, नए कॉलेज में नहीं, हर जगह जो आपके लिए नई है, जो आपका पहला दिन है, कठिनाई तो ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है और अपने लिए कैसे बोलना है, तो हर मुश्किल आसान लगती है।

0: दोस्तों, मुझे लगता है कि हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे। नए विद्यार्थियों को पहली बार कक्षा में जाना या फिर किसी गतिविधि में शामिल होना, चर्चाओं में भाग लेना या फिर नए मित्र बनाना, कई बार देखने में आता है कि उन्हें भी एडजस्टमेंट की समस्याएं खड़ी सी हो जाती हैं।
1: नए कर्मचारी को भी सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। उसे पुराने कर्मचारियों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। झिझकना नहीं चाहिए। नए ऑफिस में वरिष्ठ और सहकर्मी सारे कर्मचारियों की प्रणाली समझनी चाहिए। उसे टीम में शामिल होना चाहिए और छोटी छोटी उपलब्धियों को की हर एक व्यक्ति की सराहना करनी चाहिए।
0: मुझे लगता है माधवी, अगर हम धीरे धीरे हर माहौल में ढलने की कोशिश करें और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो हमारा निजी तौर पे थोड़ा सा साथ दें, तो मुझे लगता है जो एडजस्टमेंट नाम की चीज़ है ना, धीरे धीरे हम उनकी ज़िंदगी में अपनापन उतार भी सकते हैं और उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को अपने ज़िंदगी में भी उतार सकते हैं। तुम क्या कहती हो उस विषय पर?
1: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, क्योंकि अगर किसी परेशानी का समाधान निकालना है तो दोनों को इक्वली मेहनत करनी चाहिए, और दोनों तरफ से अगर मेहनत होगी तो हर चीज़ आसान हो जाएगी।
0: बिल्कुल, तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और इस माहौल में ढलने की कोशिश बिल्कुल करेंगे।

0: साथियों, अब आपसे विदा लेने का समय आ चला है। खैर, उसके पहले हम आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर आपको बता देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला किस कला के लिए जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर है ढोकरा कला।
1: और जो दूसरा सवाल था वो ये था कि सफेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है?
0: साथियों,
1: तो इसका उत्तर है रीवा।
0: बिल्कुल साथियों, सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम रोजाना ही आपके लिए लेकर आते हैं। उम्मीद है कि ये आपको ज्ञानवर्धक करते ही होंगे। अब अनुमति चाहेंगे, मैं आपका दोस्त राज
1: और मैं माधवी।
2: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
3: जिंदगी का सफर।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म सफ़र में। शब्द रचना इंदिवर की थी, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओ लीजिए सुनिए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इस फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मेरे हमसफ़र फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन कल्याण जी आनंद जी की है।

मेरे हम सफ़र। इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश को, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और उस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: दंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,

0: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजा जी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
0: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
0: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
1: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
0: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
0: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी,
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
0: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
0: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।

0: घर का सारा सामान बैठ जाएगा।
1: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल
2: सारी फसल बह गई।
3: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
4: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
3: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा काट।
5: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
3: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
6: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहो।
3: तो साथियों ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
7: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस्ते क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
8: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
4: और पैसे कमाने हैं।
3: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
4: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
9: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
3: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
10: अरे हमारे पशु पक्षी हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
11: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
1: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
11: सारी फसल बह गई।
10: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
11: चलो जल्दी ऊपर,
10: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
11: चलो चलो,
10: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
11: ध्यान से संभल कर।
3: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
12: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
13: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता, मैं ही जीवन हूं धरती का। मुझे नष्ट मत करो, मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: 7-8 छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
5: कोई घबराने वाली बात नहीं है रे।
1: हाँ? वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी 2-3 नहीं, बड़े बड़े 7-8 छत्ते लगे हैं। हाँ,
5: 7-8 छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
5: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो 2 गगरी फट तो हो ही जाएगा।
6: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ कर
5: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
6: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
6: हाँ।

0: अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज ही ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
3: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
1: ठीक रहेगा।
2: सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं। अच्छा। वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना। हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी। नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो। चाची,
4: क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।

0: सबको बड़ी बहादुर बनती है।
1: हम जान दे देंगे, मगर तेरे को नहीं छोड़ेंगे। अरे देख के क्या हो, चला कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, शिब्बा तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
2: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पैरों से अलग कर दो। अरे खुदा जय जवान जय किसान।
3: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
4: चिब्बू भाग ले यहाँ से,
5: बाद में
3: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
6: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया। ऐसी ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे क्या
7: बात भाई,
6: जीतती रहे बेटी, जीतती
1: रहे। हम सबका कर्तव्य है।
3: दोस्तों इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
8: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को
8: कुसुम लता
9: जगबंधु
8: चेतना
9: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार, नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग।
11: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए हरिओम शरण की गाई रचनाएं।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण की गायी रचनाएं।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण की गाई भक्ति रचनाएं।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की गाई भक्ति रचना को। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है बड़वानी से, जहां खरीफ सीजन के लिए अब तक 1,86,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का कार्य पूरा हो चुका है, जो प्रस्तावित लक्ष्य का 76% है। पेश है बड़वानी से हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया की यह रिपोर्ट।
2: पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में खरीफ का सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब तक 1,86,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो प्रस्तावित लक्ष्य का 76% से अधिक है। कृषि विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह में 100% लक्ष्य हासिल हो जाएगा। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों की समीक्षा करें तो जिले में फसल के पैटर्न में बदलाव साफ नजर आ रहा है। जिले के किसान अब परंपरागत कपास और धान जैसी फसलों की तुलना में मक्का की खेती को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। वर्ष 2024 में जिले में मक्के का रकबा जहां 87,611 हेक्टेयर था, वो इस वर्ष बढ़कर 1,01,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पहुंच गया है। कृषि विभाग के अनुसार पिछले 3-4 वर्षों में जिले में मक्के की फसल के रकबे में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण लागत का कम आना, सिंचाई के लिए अपेक्षाकृत कम पानी लगना तथा बाजार में फसल का बेहतर दाम मिलना है। जिन कारणों से जिले के किसान अब मक्के की फसल का रकबा बढ़ाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया।
1: हमारी दूसरी खबर है छिंदवाड़ा जिले से। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को धार्मिक क्षेत्रों के भ्रमण करने का मौका मिल रहा है। बीते दिनों जिले के 196 तीर्थयात्रियों को गुवाहाटी में स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए एक विशेष ट्रेन से रवाना किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति।
3: मध्य प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी और

0: ऊपरी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के बुजुर्गों को एक बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। गत दिवस शाम जब सूरज ढल रहा था तब छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से 196 तीर्थ यात्रियों का जत्था असम के गुवाहाटी में स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए एक विशेष ट्रेन से रवाना हुआ। बुजुर्गों के चेहरे पर आस्था की चमक और जीवन के इस पड़ाव पर तीर्थ करने का संतोष साफ देखा जा सकता था। बुजुर्गों को सफर में कोई परेशानी ना हो इसके लिए ट्रेन में उनके साथ 4 शासकीय कर्मचारियों को बतौर गाइड भेजा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति।
1: अगली खबर है अशोकनगर से, जहां साइबर ठगी से सावधानियों को लेकर पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला।
2: साइबर ठगी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अशोकनगर पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर वाहन रैली निकालकर नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक भी किया गया। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को यह अवगत कराना है कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी स्वयं को बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कुरियर कंपनी, कस्टमर केयर प्रतिनिधि अथवा सरकारी संस्था का कर्मचारी बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। कई मामलों में फर्जी लिंक भेजकर मोबाइल हैंग किए जा रहे हैं, जबकि डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन निवेश, पार्ट टाइम जॉब, KYC अपडेट, बिजली बिल, लॉटरी, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग एवं फर्जी APK फाइल के माध्यम से भी ठगी की जा रही है। साइबर अपराधियों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय जागरूकता एवं सतर्कता है। यदि प्रत्येक नागरिक ऑनलाइन लेन देन करते समय आवश्यक सावधानी अपनाए और किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक अथवा संदेश पर विश्वास न करे तो अधिकांश साइबर अपराधों को रोका जा सकता है। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम रुख करते हैं भोपाल की तरफ, जहां बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले की सतगड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता ताहिर खान की यह रिपोर्ट।
3: भोपाल के सतगड़ी क्षेत्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क आकर लेगा। पार्क का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि इस क्षेत्र को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर देश और प्रदेश के करीब 200 से अधिक उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि
4: कोला और क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारे विधायक जी बात कर रहे थे, ये कोलार क्षेत्र तो अपना है ही, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को, इसी सतगड़ी को भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए, मैं घोषणा करता हूँ इस पूरे क्षेत्र के लिए।
3: उन्होंने कहा कि
5: मुझे इस बात की प्रसन्नता है डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। अभी हमने मुरैना में सोलर पार्क का एक बड़ा निवेश किया। चंबल के अंदर भी रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट और 2500 करोड़ का मिसाइल भी बनेगी शिवपुरी में, और पाकिस्तान के आखिरी कोने तक निशाना लगा सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश की ताकत, 1000 किलोमीटर देश के दुश्मनों से निपटने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे खड़ा है। ये विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी रखने वाली नहीं।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान।
1: हमारी अगली खबर है बालाघाट से, जहां बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए डायरिया रोको अभियान के तहत गांव में हैंड पंपों का सुधार और पेयजल स्रोतों का क्लोरीनीकरण किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं बालाघाट से हमारे संवाददाता श्रीनिवास चौधरी।
6: मेरा नाम बीएल उइके, प्रभारी कार्यपालन यंत्री बालाघाट। शासन के निर्देश अनुसार और हमारे विभाग के द्वारा जो जल स्रोत हैं इनके क्लोरिनेशन कार्य के निर्देश प्राप्त हुए हैं और इसमें सतत हमारे जो जल स्रोत है लगभग 1066

0: प्रोजेक्ट योजनाएं हैं और 22,020 हैंडपंप है। इन सभी जल स्रोतों में अक्सर बारिश के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के कारण जल जनित बीमारियां होती है, इनके क्लोरिनेशन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो हमारे इन सभी स्रोतों का क्लोरिनेशन कार्य बालाघाट जिले में जारी है।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी।
2: अब हम चलते हैं दमोह जिले की तरफ, जहां खरीफ की फसल बुआई का कार्य शुरू हो गया है। किसानों को खाद की असुविधा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने ई टोकन के माध्यम से खाद उपलब्ध करा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे दमोह से हमारे संवाददाता अनिल जैन।
3: रुक रुक कर हो रही बारिश जिसमें किसान खरीफ की फसलों की बोनी कर सके, इसके लिए जिले में खाद उपलब्ध कराया गया है। अभी जिले में लगभग 14,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है, जिसे डबल्ला केंद्रों, सहकारी समितियों और मार्कफेड के गोदामों में रखा गया है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने आकाशवाणी को बताया,
4: खरीफ के बोनी के सीजन को दृष्टिगत रखते हुए हमारे किसान भाइयों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, उन्हें सही खाद मिले, सही बीज मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, सही दाम पर मिले, ये सब सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो के विक्रेता हैं खाद बीज की, इनका निरीक्षण कराया जा रहा है। अभी तक 38 दुकानों का निरीक्षण कराया गया है, जिसमें से 14 में अनियमितता पाई जाने के कारण 10 के विक्रय प्रतिष्ठान के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 1 पे FIR दर्ज की जा चुकी है और 3 पे FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से लगातार इस पर नजर रख के मॉनिटरिंग की जा रही है, किसी को कोई असुविधा ना हो। साथ ही हमारे जिले में आज की स्थिति में 14,000 MT खाद उपलब्ध है, पर्याप्त यूरिया, DAP, NPK सभी तरह के खाद उपलब्ध है। जो भी हमारे किसान भाई खाद लेना चाहें वो अपना ई विकास पोर्टल से टोकन प्राप्त करके खाद प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को यही अनुरोध है कि वो पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, वो अपना खाद प्राप्त कर लें। मत्स्य शासन द्वारा उनको 0 ऋण पर 1 वर्ष के लिए लोन दिया जाता है खाद लेने के लिए, वो उसका उपयोग करें। आगे की फसल के लिए भी यदि आपको आवश्यकता है तो अभी से आप ले सकते हैं। हमारे जिले में पर्याप्त मात्रा में DAP, यूरिया और अन्य सभी तरह की खाद उपलब्ध है।
3: किसानों को बलराम ऐप या पोर्टल के माध्यम से ई टोकन जनरेट कर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की हमारी अगली खबर है बैतूल से, जहां बैतूल का गाजरिया आम को GI टैग प्राप्त हो गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
5: मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाते हुए एक साथ 12 उद्यान की फसलों के लिए GI टैग हासिल करने में सफलता हासिल की है। देश में ये पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में GI टैग मिला है। इसमें बैतूल का गाजरिया आम भी शामिल है। आम किस्म गाजरिया जिले की लोकप्रिय किस्म है। फलों की सुगंध अनानास जैसी होती है एवं गूदा गाजर के समान होने के कारण इसे गाजरिया आम कहते हैं। आम को GI टैग प्राप्त हो गया है, जिससे जिले को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी एवं किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। यह मुख्यतः विकासखंड बैतूल, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर एवं चिचोली में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इन्हीं विकास खंडों में क्लस्टर बनाकर क्षेत्र विस्तार की कार्य योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के आय को 2 गुना बढ़ाने के लिए उनसे उद्यानिकी की फसलों की खेती से जुड़ने का आह्वान किया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
2: हमारी अगली खबर है भिंड जिले से, जहां उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी दे रहे भिंड से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा।
6: भिंड जिले में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण डाइट भिंड में आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर भिंड एवं मुख्य कार्यपालाधिकारी जिला पंचायत एवं जिला परियोजना समन्वयक का मार्गदर्शन रहा। इस दौरान डाइट प्राचार्य आनंद शर्मा, प्रशिक्षण प्रभारी डाइट संदीप सिंह कुशवाहा, जितेंद्र सिंह भदौरिया और जिला सह समन्वयक अशोक भैया, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी और खंड स्रोत समन्वयक, ब्लॉक सह समन्वयक व ब्लॉक अकादमिक समन्वयक उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में जिला सह समन्वयक अशोक सिंह पवैया एवं डाइट प्रशिक्षण प्रभारी संदीप सिंह कुशवाहा द्वारा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 में असाक्षर व्यक्तियों के सर्वेक्षण, मॉनिटरिंग एवं असाक्षर संबंधी अन्य गतिविधियों के सफल संचालन के निर्देश उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को दिए गए। प्रशिक्षण में जिला सह समन्वयक अशोक पविया और ब्लॉक सह समन्वयक MT द्वारा भिंड जिले के सभी साक्षरता से संबंधित आंकड़े PPT के माध्यम से प्रस्तुत किए गए और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त निर्देश के अनुरूप PPT को प्रोजेक्टर की मदद से सभी प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया। प्रत्येक विकास खंड में अक्षर साथियों और शिक्षक की मदद से प्रत्येक घर

0: के असाक्षर व्यक्तियों का ऑनलाइन ऑफलाइन शत प्रतिशत सर्वे कार्य कराया जाना सुनिश्चित हुआ। सर्वे कार्य 15 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर एनआईएलपी ऐप पर हस्ताक्षरों की एंट्री शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे देवें।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 7:20 पर। आज की बात के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह कैसे बनाए, इस विषय पर साधना मिश्रा से भारती की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। सुर्खियों में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात 8:00। 8:15 पर फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिल्म गीत हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर और रात्रि 10:00। पब्लिक स्पीक, यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत में विदुषी पद्मा तलवलकर का राग हमीर और राग केदार हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। यह था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का।

0: श्रोताओं, अब जानकारी दे दें कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। सुबह 7:20 पर सुनहरे पल कार्यक्रम प्रसारित होगा। 8:30 पर विज्ञान पत्रिका में चिप डिजाइनिंग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर केंद्रित यह कार्यक्रम होगा, जिसमें डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। लोक संगीत में रामगिरी वर्मा और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:00, और सुगम संगीत में शीला वर्मा की गाई रचनाएं प्रसारित होगी 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत में अमान अली बंगश का सरोद पर बजाया राग गुजरी तोड़ी हम आपको सुनाएंगे सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी सुबह 10:00। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा सुबह 10:05 पर। हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विवरण सुनिए। कल सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे का अनुप्रसारण होगा। फिल्म संगीत होगा दिन में 12:00 से। संग्रहालय से यह कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा 12:30 पर। महिला कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा दिन में 1:00। आरंभिक चर्चा होगी सजगता और सतर्कता से करें ऑनलाइन पेमेंट योजना में जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में के विषय में रूप लावण्य में नाखूनों की चमक बरकरार रखें इस विषय पर जानकारी प्रदान की जाएगी। लोक संगीत का अनुप्रसारण होगा 1:30 पर और सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 1:45 पर। सांध्यकालीन सभा में युवा श्रोताओं कार्यक्रम युववाणी होगा 5:00। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा 5:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण होगा कल संध्या 6:00 से। खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा संध्या 7:20 पर। सुर्खियों में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा रात 8:00 और 8:15 पर होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत हम आपके लिए लेकर आए हैं कल 9:15 पर। उत्तर कार्यक्रम केह कक्षा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। और शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग पूर्वी और मारू बिहाग हम आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। यह था विवरण कल प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों का। मीडियम वेव 462.96 यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
6: कूल रहो।
7: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले प्रदेश टेक्नोलॉजी और हाईटेक निवेश का हब बन रहा। दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी से आशुतोष तिवारी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह ने भरा पर्चा। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 जुलाई से शुरू होगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान। और मॉनसून की रफ्तार धीमी, 22 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार, 16 जुलाई से नया सिस्टम होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश टेक्नोलॉजी और हाईटेक निवेश का हब बन रहा है। देश विदेश की अग्रणी कंपनियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और शिक्षण संस्थानों की भागीदारी ने यह संकेत भी दिया।

0: गया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा तकनीक और नवाचार के सहारे नई ऊंचाइयों को छू सकती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 178.70 करोड़ के निवेश से स्थापित 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया, जिनसे 1,229 नए रोजगार सृजित होंगे।
1: टेक ग्रोथ 3 कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश को GCC सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
0: इस दौरान लीड इंडिया फॉर गूगल प्ले और MPSDDC के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ। वहीं स्पेन के बार्सिलोना स्थित सबमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिक स्मिथ सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में इकाइयां स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए गए। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव मौजूद रहे। कांग्रेस के तत्कालीन विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी शून्य घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को दतिया सीट पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को मतों की गणना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमो ऐप और माईगोव पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। केंद्र सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरि है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6ठा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया कि INS महेंद्रगिरि को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से बचाने और समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने आज बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान के अंतर्गत समयबद्ध रूप से जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में दुग्ध समृद्धि अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हुआ। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि 18 जुलाई

चलने वाले इस अभियान में शहडोल जिले के 7912 पशुपालकों से संपर्क कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार, पशु पोषण और स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी। उधर नर्मदापुरम जिले में 6 दिवसीय अभियान के दौरान नर्मदापुरम, बाबई, पिपरिया, बनखेड़ी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा, केसला विकासखंड के 11595 पशुपालक परिवारों तक विभागीय अमला पहुंचेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अशोकनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प पूरा हो गया है। स्टेशन के नवनिर्मित स्वरूप का 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी सोमवार यानी आज अशोकनगर पहुंचे और उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पत्रकार संघ ने केंद्रीय मंत्री और गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम संबोधित एक मांग पत्र डीआरएम को सौंपा। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग अशोकनगर को इंदौर और नई दिल्ली से सीधी रेल सेवा के जरिए जोड़ने की रही। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। विभाग को पूर्व में समय सीमा के भीतर बेहद कम संख्या में आवेदन मिले थे, जिसके चलते जमीनी स्तर पर काम करने वाले वास्तविक हकदारों तक पहुंचने के उद्देश्य से आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुल 6 अलग अलग श्रेणियों में राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें विजेताओं को 1,00,000 रुपए तक की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। प्रदेश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से में मॉनसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 4 दिनों से मॉनसून की गति धीमी पड़ गई है, जिससे बारिश का दौर थम गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर सहित तमाम जिलों में अलीराजपुर में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से सेना भर्ती रैली शुरू होगी। मंडला जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला योजना भवन में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनहित से जुड़े मामलों, समय सीमा के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खंडवा में रक्तदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 जुलाई को महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड और 18 जुलाई को खान शामली वार्ड में विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में 14 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत होगी और 31 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।
6: भाई बहन होन, आज तमारा साथे है तमारी बहन भारती। आज का कार्यक्रम में हम तमारा से बात करांगा फसल बीमा योजना की। इना खरीफ का मौसम में वित्तीय जोखिम कम करने में फसल बीमा योजना की भूमिका अपनी अलग ही होवे है। अपने किसान भाई होन, ये जो मौसम होवे है एमे खरीफ की फसल जो लगावे है नी, उनका सामने घनी सी परेशानियों आवे है। तो इन्हीं परेशानियों से बचने सारू और साथे साथ जो भी जोखिम होवे उनका से बचने सारू अपना किसान भाई होन के चाहिए कि वे फसल बीमा जरूर कराए। फसल बीमा करवाई ने रखेगा तो उनके जो फसल बीमा की सहायता है वह मिली।

ग्रोथ रुकी जावे है, मतलब जो ग्रोथ भी रुकी जावे साथ साथ जो उनकी आय आए वह भी अपना किसान भाइयों नहीं ले पावे है और आर्थिक संकट उनका सामने खड़ो ही जावे है। इसी जोखिम के कम करने सारू फसल बीमा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। फसल बीमा एक ऐसी योजना है जिसमें किसान बहुत कम प्रीमियम दे के अपनी फसल को बीमो करवाई सके है। यदि प्राकृतिक आपदा जैसे सूखो हुओ, बाढ़ हुई, चक्रवात हुओ, अत्यधिक वर्षा या अन्य अधिसूचित कारणों से फसल के नुकसान होवे तो या जो बीमा है नहीं, जो बीमा अपना किसान भाई उन्होंने करवाई रखे है या कंपनी निर्धारित नियम का अनुसार किसान के मुआवजो देवे है, इससे किसान के आर्थिक सहायता भी मिली जावे है और वह अपनी अगली फसल जो आगे उनके उगानी है ओके भी तैयारी करी सके है। तो इका सारू सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 18 फरवरी 2016 में शुरू करी थी, खरीफ फसल होन सारू किसान भाई होन के केवल बीमित राशि को 2% प्रीमियम देनो होवे है। मतलब अगर किसान अपनो फसल बीमा करवाए तो वो जितना को बीमो करवाई रहो है उसकी जो राशि आए वह 2% में ओके देनी पड़े है, बाकी प्रीमियम को बड़ो हिस्सों सरकार उठावे है। और जैसे कि कभी कभी कहीं हो कि प्राकृतिक आपदा हो जैसे सूखा, बाढ़, जल भराव, चक्रवात, भूस्खलन, बादल को फटनो, प्राकृतिक आग, बिजली गिरनो तथा कुछ परिस्थिति में जैसे कि कीट एवं रोग को व्यापक नुकसान हुई गयो है तो किसान बीमा को लाभ लीने इन आपदाओं से बची सके। स्थानीय प्राकृतिक आपदा जो होवे है जिका से किसान भाइयों के नुकसान होवे है तो इन नुकसान की भरपाई सारू जो बीमो करवायो है तो बीमा से उनके वह राशि मिली जावे। फसल को नुकसान हुई जाने की स्थिति में सबसे पहला अपने किसान भाइयों के जो समय है उन्हीं समय सीमा का भीतर भीतर अपना नुकसान की सूचना देनी चाहिए। सूचना बीमा कंपनी, बैंक, कृषि विभाग या कॉमन सर्विस सेंटर वाला के अपन ऑनलाइन का माध्यम से भी दे सका हाँ। और टेम पे सूचना देने से दावा की जो प्रक्रिया हुए नहीं वह घनी आसान हो जावे है और अपना किसान भाई उनके इना दावा के मिलना में परेशानी भी नहीं आवे है। और फसल बीमा अपना जो भी किसान भाई है सब करवाई सकता है, बस उनका पास दस्तावेज होना चाहिए जो कि इसमें मांगे जावे है। और साथ ही साथ यो भी जरूरी होवे है कि जब फसल खराब हो जावे नहीं तो किसान के नुकसान की भरपाई सारू मुआवजो जो मिले है उससे वे अपना कर्ज चुकाई सके है, परिवार का जो खर्च चलाने और अगली फसल सारू बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में उनके इस मुआवजा से सहायता मिले है। यानी फसल बीमा किसान की आय में स्थिरता लाने को काम करे है। फसल बीमा सुरक्षा तो देवे ही है लेकिन अच्छी खेती का साथ ही साथ अपना किसान भाई उनके चाहिए कि वे अच्छी खेती का तरीका भी अपनावे, जैसे कि समय पे बुवाई करें, प्रमाणित बीज को उपयोग करें, संतुलित उर्वरक को प्रबंध करें, जल संरक्षण करें, साथ ही साथ कीट एवं रोग को प्रबंध भी करीने रखे, नियमित अपना जो खेत है ओकी निगरानी करता रहे ताकि कीट और रोग से अपनी फसल के बचा ही सके और मौसम का पूर्वानुसार ही कृषि को कार्य करे। इससे कहीं होगा कि जोखिम भी कम होवेगो और साथ ही साथ अपनी फसल भी अच्छी अपना किसान भाइयों ले पाएगा। मैं अब सुनी लेवा यो लोकगीत चिखे गायो है बैंड स्वाति उखले और साथी बहनों ने।

0: बहनों अभी अपन ने बहन स्वाति उखले ने साथी बहनों को गायो यो लोकगीत सुनियो ने बहनों घनी ऐसी योजना होवे जी का बारा में अपना किसान भाई होन के कोई जानकारी नहीं होवे और जानकारी नहीं होवे तो वे इन योजनाओं को लाभ भी नहीं ले पावे हैं। तो जाना कि ये प्रगतिशील कृषक हिमांशु शर्मा जो कि ग्राम जोधपुर तहसील मनावर जिला धार से है या अपना किसान भाई उनके कई केनो चावे है। किसान भाई आज अपन बात करांगा प्रगतिशील कृषक भाई हिमांशु शर्मा से जो अपना किसान भाई उनके सरकार की कौन सी योजनाएं चली रही है और इको लाभ अपना जो भाई होने कैसे लेवे उनके इन योजनाओं को लाभ लेने सारू कई करनो पड़े है और किनी तरीका से इन्हीं योजनाओं को भी लाभ ली सके है। तो इन्हीं जानकारी सारू आज अपन अपनी चौपाल पे बात करांगा प्रगतिशील भाई हिमांशु शर्मा से।
1: तो सभी की तरफ से हिमांशु भाई आपको हमारी चौपाल पे स्वागत है। राम राम। सबसे पहला तो मैं आपसे हाँ यूँ जानना चाहूंगा कि आप मतलब हमारा किसान भाई उनके कई जानकारी देने वाला हूँ।
2: मेरा नाम हिमांशु शर्मा, मैं ग्राम जोधपुर तहसील मनावर डिस्ट्रिक्ट धारता एमपी का निवासी हूँ। इसमें मैं करीब 10 से 12 सालों से एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती के कार्य को कर रहा हूँ। इसमें अभी बहुत सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट की जो चलाई जा रही है, मैं एक अभी जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो गवर्नमेंट का जो कामकाज चल रहा है, जैसे बागवानी की बात करें तो बागवानी में अमरूद, पपीता, नींबू, मौसम्बी, आम, सीताफल, जैसे प्लांट लगाने में ड्रिप इरिगेशन का जो गवर्नमेंट अनुदान के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है वह किसानों ने करना चाहिए। दूसरा, मैं जो जैविक खेती के ऊपर भी जो कार्य कर रही है गवर्नमेंट, उसमें भी किसानों ने हाथ बटाना चाहिए ताकि रासायनिक खाद से थोड़ा सा राहत मिल सके और प्रोडक्शन भी मिल सके। तो मैंने
1: मतलब ये जो योजना है इसका हर किसान भाई उन लाभ ले सकते
2: हैं? हाँ, इस योजना का सभी किसान भाई फायदा ले सकते हैं। सिंचित जमीन हो जो ड्रिप इरिगेशन करना चाहता है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से जो भी लॉटरी सिस्टम रहेगा उसमें अपना नाम आगे आने से अपने को सब फायदा मिल जाएगा।
1: अच्छा, इसके अलावा भी और भी कोई सी सरकार की योजना है जिसका लाभ अपने किसान भाई ले सकते?
2: दूसरी योजनाएं भी बड़े बड़े किसानों के लिए चलाई जा रही है गवर्नमेंट की ओर से, जैसे वेयर हाउस वगैरह है, उसमें भी किसान भाई अपना हाथ बटा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े गोडाउन का कभी कार्य करना हो, वेयर हाउस बनाना हो, टेक हाउस बनाना हो, तो उसमें भी किसानों को अपना जो फसल का जो रखने के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ती है उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे उसमें बहुत अच्छा अनुदान है तो किसान भाई अपने गोडाउन बनाने के लिए भी कार्य कर सकते हैं।
1: अच्छा, और फसल से संबंधित कई जानकारी अपना किसान भाइयों के अपन दे सका जिका से वे उसको लाभ ले सके?
2: फसल के बारे में तो अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो समय के देखते हुए अभी किसानों ने जो अर्ली क्रॉप पे ध्यान देना चाहिए, जैसे बेल वर्गीय फसल रहती है, जैसे करेला, लौकी वगैरह, सब्जी की बात करता हूँ मैं। समय को देखते हुए किसानों ने जल्दी से जो क्रॉप अपने हाथ में आए और समय से अपना कार्य हुआ करे, आजकल खर्चे बहुत हो गए हैं तो बड़ी क्रॉप के बजाय किसानों ने अर्ली क्रॉप का डिसीजन लेना चाहिए, जो कि मतलब 3 से 4 महीने में वो क्रॉप अपने हाथ में आ जाए और उसका उत्पादन मिल के अपने पास अपना बजट प्राप्त हो सके।
1: साथ सरकार से जो फसल योजना की जो योजनाएं मिले उसको भी लाभ अपने किसान भाई कैसे ले सके? मतलब
2: योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने को, जैसे अभी खाद की बात करें तो पहले अपने को टोकन बनाना पड़ रहा है गवर्नमेंट से जो पॉलिसी लॉन्च की है इस वर्ष में। तो अपने को ऑलरेडी आगे पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही अपना टोकन बुक हो रहा है अपने, जिससे एकड़ की जो अपने पास खेती है उस हिसाब से अपना खाद वगैरह मिल रहा है, हर दुकान से मिल रहा है, खाद में तकलीफें आ नहीं रही है, तो वो भी हो सकता है। और दूसरा ये है, ये है कि योजनाओं के लिए अपने को पूरा होशो हवास में रहना चाहिए, ताकि कुछ योजनाएं आती है तो अपने को पता चलता ही नहीं है और उसके पहले पहले वो योजना बंद हो जाती है।
1: तो इन्हीं योजना को अपने किसान भाई उन लाभ लेवे, तो ओका लिए किसान भाई उनके कई करने पड़े, मतलब
2: उसके लिए अपने को न्यूज वगैरह में संपर्क बनाए रखना है। दूसरा संपर्क ये है कि अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो ऑनलाइन का जो कार्य कर रहे हैं फाइबर फोटो वाले, उनके पास बहुत सारी योजनाएं आती है, एग्रीकल्चर विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, सीड वितरण भी होता रहता है, उस हिसाब से किसानों ने वो बार बार उस हॉर्टिकल्चर विभाग में एग्रीकल्चर विभाग में थोड़े बार बार मतलब एक दो मंथ में वहाँ पे थोड़ा सा विजिट करके जानकारी स्पष्ट कर लेनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की योजनाएं अपने हाथ में आ

0: जैसे अपना के किसी योजना को लाभ अपना के मिल गया तो ओका लिए अपना के आवेदन कैसे करना है, उसमें कई कई दस्तावेज लागे, एक का बारे में भी आप बता दो।
1: अभी जैसे अपने को ऑनलाइन आवेदन करना हो तो ड्रिप इरिगेशन का ही बात करूँ तो अपने को केवल एक आधार कार्ड अपना जो लगता है और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी अपना वो पावती बोल सकते हैं खाता खतरा का वो क्रमांक नंबर चाहिए अपने को, मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त करके ऑनलाइन अपन आवेदन करके अपना लॉटरी में नाम अपन दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे भी अपना लॉटरी में नाम आता है तो वो अपने पास मैसेज आ जाता है तो अपने को किसी वेंडर के थ्रू उसका मटेरियल प्राप्त हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा, और जैसे कोई भी उनके ऐसे ऑनलाइन नहीं करना हो तो वे दूसरी तरह से कैसे योजना को लाभ ले सके?
1: जिसको ऑनलाइन वैसे आजकल सारी सुविधाएं ऑनलाइन के हिसाब से ही हो रही है, पर अपने को थोड़ा जानकारी नहीं रहती है तो अपने को ग्राम सेवक वगैरह से संपर्क करना चाहिए, पटवारी वगैरह से संपर्क करना चाहिए, गांव के जो भी हैं शहर के जो भी उनसे संपर्क करके अपने अपना कार्य उस जगह तक पहुँच जाता है, वो अपने को पूरा ही जानकारी स्पष्ट करवा देते हैं ताकि अपना कार्य हो सके।
0: अभी एक योजना चली रही है फसल बीमा योजना,
1: अभी फसल बीमा योजना जो गवर्नमेंट की चल रही है उसमें अपने को बैंक में जाना है अपना जो केसीसी लोन वगैरह जो चल रहा है जहाँ पे अपना अकाउंट है वहाँ पे अपने को जाके वहाँ पे बात करना है, वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं तो उनसे बात करके अपने जो क्रॉप लगा रखा है जैसे सोयाबीन है मक्का है कॉटन है उस हिसाब से अलग अलग दर पे वो प्रीमियम निर्धारित कर रखी है गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से तो अपना एकरेज है उस हिसाब से अपने को अपना फसल बीमा करवाना है और फसल बीमा करवाने के बाद जो भी वो पॉलिसी नंबर देता है उस पॉलिसी नंबर को अपने को अपने पास से रखना है और कुछ समस्या आने पर वो पॉलिसी नंबर वापस बैंक के थ्रू वापिस जाके दिखाना पड़ता है ताकि वो अपना कार्य पूरा हो सके।
0: अच्छा, और कभी किसी कारण से अपनी फसल के नुकसान है वो
1: जैसे किस कारण वैसे पानी ज्यादा होने के कारण भरपाई मतलब फसल खराब हो जाती है, पानी कम होने से पानी ज्यादा होने से जो नुकसान होता है उसके लिए अपने को गवर्नमेंट के अपने जो क्षेत्र में जो कार्य हॉर्टिकल्चर में जो देख रहे हैं जैसे ग्राम सेवक वगैरह है उनको सूचना करना पड़ता है कि यार हमारा क्रॉप ऐसा हो गया है पानी के कारण पानी अधिक होने के कारण खराब हो गया है, हवा तेज चलने के कारण जो है बीज गिर गया है जमीन पे तो वो उसका फिर सर्वे करवाना पड़ता है, सर्वे करवाने के बाद वो उसका नोटिस बना के आगे भेजते हैं ताकि अपने को बैंक में बैंक के द्वारा वो उसका फसल बीमा का फायदा मिल सके।
0: और कौन कौन सी योजनाएं अपना मतलब सरकार की है जो अभी चली रही है?
1: अभी ये अभी गवर्नमेंट ने जो सोलर वगैरह का भी कुछ किसानों के लिए चालू किया है,
0: सोलर पैनल,
1: हाँ सोलर पैनल का अभी कार्य चालू किया है जिसमें आपको 5000 की मोटर चलाने के लिए अपने को सोलर पैनल गवर्नमेंट अनुदान के क्षेत्र में दे रही है, उसका भी अपने को ऑनलाइन आवेदन करना है, लॉटरी सिस्टम नाम आने पर वो फायदा भी अपने को किसानों को मिल सकता है ताकि बिजली के संकट से भी वो दूर हो सके अपने हिसाब से, वो रात के समय ना खेत में जाए और दिन के समय ही अपना कार्य सिंचाई का पूर्ण कर सके।
0: अच्छा अच्छा, तो ये लॉटरी सिस्टम से ही निकले मतलब ऐसे अगर अपन चाहो तो नहीं लग ही सका?
1: ये सुविधा गवर्नमेंट ने पूरे क्षेत्र में जो एक ही समूह में डाल रखा है, जो भी लॉटरी में जिसका नाम आगे आता है किसान का उसको ही इसका फायदा।
0: अच्छा अच्छा, एक अलावा आप हमारा किसान भाई उनसे और कहीं कहना चाहो?
1: बस यही है, मेरा यही अनुभव है, जो मेरा अनुभव है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि दो क्रॉप के आज में जाना चाहिए किसानों ने जाना चाहिए तो अर्ली सोइंग वाली क्रॉप लगाना चाहिए समय को देखते हुए क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं आज के, तो अर्ली सोइंग में जो भी क्रॉप आता है उसको किसान ने अपना बना के उसके और अग्रसर होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो भी कॉस्टिंग कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा मिले उस हिसाब से काम करने के लिए भी बहुत सारी क्रॉप है जैसे हॉर्टिकल्चर में एक बागवानी के क्षेत्र में बहुत अभी अच्छा कार्य हो रहा है, बागवानी के आम का आम के प्लांटेशन भी कर रहे हैं ताकि एक बार प्लांटेशन करने के बाद में वह किसान कंटिन्यू उसका फायदा ले सके।
0: अच्छा अच्छा, तो मतलब जितनी जल्दी अपन अपने

0: उपज लगावांगा उतनी जल्दी उनको फायदा मिला, ये बात को अपने किसान भाइयों से ध्यान रखना।
1: और दूसरा ये है कि अभी समय को देखते हुए किसानों ने जितना भी हो सके ड्रिप इरिगेशन पे काम करना चाहिए ताकि पानी का भी बचाव हो सके, हर्बिसाइड का भी बचाव हो सके। आजकल मजदूरों की समस्या जबरदस्त होती जा रही है, तो मजदूरों से लड़ने के लिए अपने को अपना सुविधा के हिसाब से अपना कार्य करना।
0: हिमांशु भाई, आपने हमारा किसान भाइयों के इतनी अच्छी जानकारी दी, एक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिन अभी अपन ने प्रगतिशील कृषक हिमांशु शर्मा से सरकारी योजनाओं का बारे में जानकारी सुनी और इससे हमारा किसान भाइयों जरूर लाभ लेवेगा। ने अब जाना कि जामुन खाना से कई कई फायदा होवे, यो बस स्वादिष्ट नहीं होवे बल्कि स्वास्थ्य सारु भी घणो फायदेमंद होवे है। आयुर्वेद में जामुना के एक प्राकृतिक औषधि का रूप में भी उपयोग में लियो जावे है। खास तौर पर यो शक्कर की बीमारी, पाचन संबंधी परेशानी, रोग रोधन शक्ति बढ़ाने में घणो ही मदद करे है। जामुन में पाए जाने वालों तत्व खून में पाई जाने वाली शक्कर के भी नियंत्रित करे है। इकी गुटली भी घणी काम की होवे है, इको पाउडर भी शक्कर के बढ़ने से रोके है। जामुन में फाइबर घणो होवे है जो पाचन प्रक्रिया के सुधारने ने साथ ही कब्ज की परेशानी के कम करने में घणो मदद करे है। जामुन में पाए जाने वालों विटामिन सी शरीर में रोग रोधन शक्ति के मजबूत बनावे है। इनमें पोटेशियम होवे है जो हृदय के स्वास्थ्य रखने में मदद करे है। जो खून के साफ करने वालों फल भी होवे है, इके खाने से खून साफ होवे है। जब भी खावा ताज़ा जामुन खावा, यह घना फायदेमंद होवे है। जामुन का पत्ता ने उकी छाल से दांत में होने वाला दर्द, मसूड़ा से निकलने वाला खून और साथ ही साथ मसूड़ा स्वास्थ्य रखने में यह घणो मदद करे है। यह हड्डियों के भी मजबूत बनाने में मदद करे है। पर इखे खाना में थोड़ी घनी सावधानी रखा, घनी ज़्यादा मात्रा में इखे नहीं खावा या पेट की परेशानी के बढ़ सके है। नीना पेट नरा जामुन नहीं खावा, साथे शक्कर की बीमारी वाला मानक डॉक्टर की सलाह लेने ही इखे खावे। ने आगे की बात करा, इका पहला सुनी लेवा प्रेम कुमार सेन को गायो यो लोकगीत।

0: हवा को चले रोज सन्नाटो,
1: हवा को चले रोज सन्नाटो,
0: हवा को चले रोज सन्नाटो,
1: को चले रोज सन्नाटो,
0: अब तुम्हारा झाड़ मत काटो,
1: तुम्हारा झाड़ मत काटो,
0: कोई दिन हो

0: अभी अपन ने प्रेम कुमार सेन को गायो यो लोकगीत सुनियो। मैं साधना मिश्रा से जाना कि अपनी जो महिला बहन हो नवे वे स्वयं सहायता समूह कैसे बनावे और कैसे एको लाभ लेवे।
1: बहनों, जब अपनों को पैसे की जरूरत होती है तो समझ नहीं आता क्या करें, किससे पैसे लें, अगर कुछ करना भी चाहें तो पैसे की जुगाड़ कैसे हो। क्यों ना स्वयं सहायता समूह का लाभ लें और जाने ये क्या है, इसी विषय पर चर्चा करते हैं साधना मिश्रा से। साधना जी नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये स्वयं सहायता समूह है क्या।
2: मेरा सभी बहनों को नमस्कार है और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्वयं सहायता समूह, जैसे कि नाम से ही पता चलता है हमें कि ये खुद की सहायता के लिए महिलाओं द्वारा बनाया गया एक समूह होता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: जिसमें और सब 20 सदस्य, कम से कम 20 महिला सदस्य होने चाहिए।
1: अच्छा अच्छा। 20
2: और
1: सबकी
2: आयु
1: मतलब
2: 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए।
1: अच्छा, मतलब समूह में 20 होना ही।
2: हाँ, 20 कम से कम 20 महिला सदस्य तो
1: अच्छा,
2: चाहिए।
1: अच्छा अच्छा।
2: है ना, और 18 से 50 वर्ष के बीच की हो वो सब महिलाएं। और दूसरा ये कि सभी एक ही आय वर्ग की होनी चाहिए।
1: अच्छा,
2: कोई बहुत ज्यादा आय वर्ग ऐसा है कि बहुत अमीर नहीं, बहुत गरीब नहीं, करीब करीब सब समान आय वर्ग वाली हो।
1: अच्छा।
2: इस टाइप की महिलाएं ऐसा समूह बना सकती हैं।
1: तो
2: और फिर
1: क्या
2: उस समूह से जब ये महिलाएं इकट्ठी होकर हम एक मतलब मैं खुद इस समूह से जुड़ी हुई हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं इस समूह से जुड़ी हूँ।
1: अच्छा।
2: और ये महिलाएं जो है, हम सब क्या करते हैं कि एक समान आय, हम मतलब एक समान धनराशि हम एकत्रित करते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: और फिर जब सारी महिलाओं की सहमति से जिस भी बहन को आवश्यकता होती है,
1: अच्छा,
2: उस बहन को हम वो लोन के रूप में वो राशि दे देते हैं।
1: अच्छा, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप जो बोल रहे थे कि एक मतलब इतना अमाउंट हम उसमें लगाते हैं, मतलब कितना अमाउंट कहाँ से, मतलब 500, 1000, 2000?
2: हाँ,
1: मतलब
2: ये हमारी सभी बहनों की सहमति से वो होता है।
1: अच्छा,
2: हम 300 रूपए से भी चालू कर सकते हैं कि सभी बहनें 300-300 रूपए एकत्रित करें। पर चूंकि आज के समय में 300 में 20 महिलाओं में बहुत कम राशि हो पाती है,
1: जी जी,
2: तो हमारे यहाँ महिलाओं ने 1000 रूपए कम से कम किया हुआ है।
1: अच्छा।
2: और ऐसे 22 महिलाओं का हमारा सदस्य है, महिला सदस्य है हमारे समूह में।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो करीब 22,000 हमारे एकत्रित हो जाते हैं।
1: ठीक ठीक।
2: और प्रत्येक माह में ये पैसा हम जिस महिला सदस्य को आवश्यकता होती है उसको हम लोन के रूप में देते हैं। फिर वो अपनी आमदनी थोड़ा थोड़ा हमें ये नए ब्याज लौटाती रहती है।
1: अच्छा।
2: और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेती है।
1: तो
2: इस तरीके से होता है। फिर इसमें ये है कि हमारी सब जो महिलाएं हैं ये सिलाई कार्य से जुड़ी हैं, तो सभी महिलाओं का, कुछ महिलाएं तो है अपना स्वयं का पर्सनल काम, मतलब जैसे जिसका आता है, ग्राहक आते हैं उनका करके देती हैं। कुछ जो है वो रेडीमेड व्यवसाय वालों से जुड़ी हुई है।
1: अच्छा। जो खुद का अपना काम करती है, जिनके पास मतलब खुद का व्यवसाय है, वही स्वयं सहायता समूह से आपके साथ जुड़ी हुई है।
2: हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि खुद का ही हो, मगर कुछ ना कुछ वो अपना एक समान कार्य कर रही हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
2: और सभी महिलाएं करीब करीब एक जैसा कार्य कर रही हूँ। जैसे या तो दूध का व्यवसाय है किसी का, या किसी महिला का सिलाई का व्यवसाय है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: या फिर टिफिन सेंटर प्रकार इस टाइप का काम हो।
1: अच्छा अच्छा।
2: इस टाइप के काम करती हैं ये जो सिलाई वाली महिलाएं, ये वहां से लेके आती हैं रेडीमेड वालों से और इकट्ठा काम करके उन्हें कुछ आमदनी भी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: जो भी हम महिलाओं से ये धनराशि एकत्रित करते हैं, इसको हम लोन

0: फिर क्या बैंकें भी आजकल दे रही हैं लोन ऐसे समूहों को, लेकिन वो कम से कम वो समूह 6 माह पुराना होना चाहिए। इस समूह में क्या कुछ एक महिला को या दो महिलाओं को थोड़ा सा मुखिया के रूप में बनाते हैं, उसको अगाड़ी बहन कहते हैं, और उसी के घर में समय समय पे मीटिंग होती है, वहाँ पे सब निर्णय लिए जाते हैं। अच्छा। वहाँ जिस किस महिला को आवश्यकता अधिक है
1: अच्छा
0: वो तय किया जाता है।
1: तो आप जिस महिला को मतलब ये पैसे देते हैं वो मतलब ब्याज देती है या बिना ब्याज के पैसे
0: देती है? जी, ब्याज पर, बहुत कम ब्याज दर पर।
1: अच्छा।
0: ब्याज मतलब धनराशि दी जाती है, फिर वो ब्याज सही समय लौटाती है।
1: अच्छा अच्छा, मतलब आवश्यकता अनुसार आप बहनों को
0: हाँ,
1: ये राशि प्रदान
0: करते हैं। तो कम से कम वो उसका समय पे पैसा मिलने से अपना जो भी कार्य है वो पूरा कर लेती है, इससे क्या घर परिवार में भी मदद हो जाती है, परिवार के लिए बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, उनकी पढ़ाई के लिए करना चाहती है। इस तरीके से ये गरीब महिलाएं हम सब अपने परिवार को कुछ मदद दे पाती है। यहाँ तक कि कोरोना काल में जब कई लोगों की आमदनी पे बहुत ज्यादा असर हुआ था, तो उस वक्त हमारे समूह की महिलाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने मास्क आदि तैयार किए थे, उन्हें ऑर्डर मिला था मास्क का, तो उससे उनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो गई थी। और उससे फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे सेवा कार्य से जुड़े हुए कुछ संस्थान भी हमें हमारे पास आए थे।
1: अच्छा,
0: जिन्होंने भोजन पैकेट तैयार करने के लिए इन महिलाओं को कहा था।
1: अच्छा, मतलब हर तरह से इनकी मेहनत।
0: पैकेट जब उन्होंने तैयार करके दिए तो उससे भी उनकी थोड़ी बहुत मदद हो गई, आय हो गई।
1: अच्छा,
0: घर चलाने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आई। फिर हमारे पास जो समूह का इकट्ठा होता था पैसा, वो भी थोड़ा बहुत मददगार रहा।
1: साधना जी, आपने हमारी बहनों को स्वयं सहायता समूह के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, अभी अपन ने स्वयं सहायता समूह कैसे बना हुआ एक बारा में साधना मिश्रा से जानकारी सुनी। ने मंडी का भाव गया है तो अपना किसान भाई उनके मंडी का भाव बताई देवा। सोयाबीन जी के आवक्री 867, भाव रहे 4300 से 7050, और मॉडल भाव भी 7025 रहे। सरसों जी के आवक्री 5 क्विंटल, भाव रहे 3500 से 7405, और मॉडल भाव रहे 7405। गेहूं जी की आवक्री 2348 क्विंटल, भाव रहे 2071 से 3051, मॉडल भाव रहे 2470 रुपया। मटर जी की आवक्री 267 क्विंटल, भाव रहे 1825 से 3895, और मॉडल भाव रहे 3320 रुपया। धनिया जी की आवक्री 1 क्विंटल, भाव रहे 4000, मॉडल भाव और अधिकतम भाव भी यही रहे। अमचूर जी की आवक्री 4 क्विंटल, भाव रहे 2810 से 4810, और मॉडल भाव भी यही रहे। चना जी की आवक्री 140 क्विंटल, भाव रहे 3300 से 7275, और मॉडल भाव रहे 5305 रुपया। उसी प्रकार मूंग जी की आवक्री 45 क्विंटल, भाव रहे 4400 से 7025, और मॉडल भाव रहे 4400। सातेज तुअर जी की आवक्री 16 क्विंटल, भाव रहे 6570 से 7000, और मॉडल भाव रहे 6510 रुपया। ये तो ही मंडी का भाव ने। अब सुनो लेवा यो लोकगीत जिखे गायो है प्रेमलता उपाध्याय ने।

0: साधना उपाध्याय को गायो ये लोकगीत का साथ अपने बैंड भारती के आज्ञा दो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। इसमें आज आप सुनेंगे पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा।
3: इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: दयाल जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, कुछ समय पहले ये आशा की जा रही थी कि इस स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वर्तमान समय में ये कहा जा सकता है कि तनाव की जो स्थिति है वो कम नहीं हो पा रही, इस पर आप क्या कहेंगे?
5: देखिए, मेरे विचार में जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। यूएस और ईरान के बीच जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया गया था पिछले महीने, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया कि सीज फायर अब खत्म है। आपको याद होगा कि उस एमओयू में ये कहा गया था कि ईरान जो है वो कमर्शियल वेसल्स को 60 दिन के लिए फ्री पैसेज देगा और वो ओमान के साथ काम करेगा कि किस तरह से आगे ये सर्विसेज दी जाएं, इस पे निश्चय किया जा सके। लेकिन ईरान ने जो कंडीशन थी उसको पूरी तरह से नहीं कबूल किया और जो पुराना स्टेटस को था, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ओपन इंटरनेशनल वाटरवे था, उस स्थिति पे ईरान वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा था और बार बार ईरान ने ये कोशिश की कि वो दिखाए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे उसका सॉवरेन कंट्रोल है। और यहाँ तक कि ईरान ने तो कुछ टोल्स भी डिमांड किए, उन्होंने कहा कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस है। तो जब ये कमर्शियल वेसल्स ने टोल्स देने को इनकार कर दिया और ईरान की बातें मानने से इनकार किया, तो ईरान ने इन कमर्शियल शिप्स को अटैक किया और उसके जवाब में अमेरिका ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए। ईरान ने फिर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए, खासतौर पे बहरीन और कुवैत में। तो इस सब से सिचुएशन जो है वो बहुत गंभीर होती जा रही है।
4: क्या ये द्विपक्षीय टकराव है या यूं हम कहें कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम?

0: बन चुका है सीज फायर के फेल होने के बाद।
1: ये वाकई में ये जो है संतुलन तो बिल्कुल खत्म हो गया और जो स्थिति है वो और गंभीर होती जा रही है। अब मेरे विचार में ये बहुत बड़ा संकट है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं और इसको कैसे खत्म किया जाए ये सबसे बड़ा एक प्रश्न उठकर सामने आया है।
0: दयाल जी, अगर ये टकराव थोड़ा और गहरा होता है तो इसका असर कोई संदेह नहीं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। तो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं सामने?
1: देखिए, एक तो ये कि भारत के लगभग 9.5 मिलियन यानी 95 लाख लोग रहते हैं गल्फ में और वहाँ काम करते हैं, वहाँ से रिटर्न्स भेजते हैं, तो उनकी फैमिलीज की लाइफ अफेक्ट होती है अगर ये जो लड़ाई पड़ती है और उनकी नौकरियां जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा संकट कई फैमिलीज के लिए होगा और भारत के रेमिटेंसेस जो है वो उनके कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो इस रास्ते से आता है, लगभग 85-20% हम अपने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं और वेस्ट एशिया से करीब 50% हमारे पास आता है क्रूड ऑयल। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो हमारे जो सप्लाईज हैं ये बंद होते हैं और क्या होगा कि जो कीमत बढ़ेगी, ऑयल सप्लाईज वहां से बंद होंगी तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, तो इस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई और आगे ना बढ़े, किसी तरह से समझौता हो।
0: दयाल जी, जहां तक भारत की बात हम करते हैं तो पश्चिम एशिया के अधिकतर देशों के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, तो ऐसे में हमारे लिए संतुलित और बहुआयामी कूटनीति बनाए रखना आपको लगता है कि कुछ चुनौतीपूर्ण हो गया है या ये सामान्य है?
1: नहीं नहीं, वाकई इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है। जरूर हमारे रिश्ते सब पक्षों से अच्छे हैं, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और देखिए इसराइल के साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और यही सबसे मेन पार्टीज हैं इस लड़ाई में। ये बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम जरूर चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो, हम कोशिश करते हैं कि दोनों को समझाएं, बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ कायम है, लेकिन जो ये स्थिति है ये रोज बरोज और गंभीर होती जा रही है।
0: दयाल जी, वैसे तो भारत लंबे समय से संवाद का, कूटनीति का और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है और हमारी स्ट्रेटजी भी ऐसी ही रहती कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए, तो मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, तो ऐसे भारत क्या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है या भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सामने आ सकता है?
1: देखिए, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि लड़ाई का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहा था, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो यही बात हम समझाते हैं दूसरे देशों को कि भाई लड़ाई झगड़े में मत पड़ो और कोई मुश्किलात हमको डायलॉग से सॉल्व करो, डिप्लोमेसी से सॉल्व करो। इंडिया जरूर एक ऐसा देश है जो कि कोशिश कर सकता है, न सिर्फ अकेले बल्कि ऐसे फोरम्स के थ्रू जैसे G20 है जहां भारत का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, या ब्रिक्स है, इनके जरिए ये कोशिशें की जा सकती हैं कि दोनों साइड्स, अमेरिका इसराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इनको समझाया जाए कि आप डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं और लड़ाई का रास्ता छोड़ें। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस निकल सकते हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई खत्म हो और जो सिक्योरिटी ठीक से बन जाए, जिससे ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट कायम रहे।
0: दयाल जी, जैसा कि अभी आपने संयुक्त राष्ट्र और G20 का जिक्र किया तो हम थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड कर लें, ब्रिक्स की हम बात कर लें और क्वाड की बात कर लें, अन्य भी कई बहुपक्षीय मंच हैं जो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो क्या लगता है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वैश्विक संस्थाओं में भी सुधार की जरूरत है?
1: देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सुधार की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब यूनाइटेड नेशंस की आपने बात की, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीस फिर से कायम कराए और ये लड़ाई खत्म कराए, लेकिन क्या बात है कि ये यूनाइटेड नेशंस हमेशा ऐसा करने में सक्षम नहीं रहता है, वो कामयाबी नहीं पा पाता है। उसकी वजह है यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो जो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके इशारे पे इस तरह से चलती है कि कोई भी परमानेंट मेंबर जो है वो डिसीशन को वीटो कर सकता है। उनकी जो वीटो पावर है वो ग्लोबल पीस के रास्ते में एक अड़चन बनी हो जाए, क्योंकि देखिए अगर कोई जैसे लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा निर्णय लेता है जो अमेरिका को

0: इंटरेस्ट को नहीं सूट करता, अमेरिका उसको वीटो कर दे। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जो रशिया को नामंजूर हो रशिया उसको वीटो कर देगा। तो ये वीटो पावर ऐसे, और इसके साथ साथ देखिए ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में की गई थी, तब दुनिया दूसरी थी, भारत एक आजाद मुल्क था ही नहीं, तब से जो है इतने परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे भारत है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील, इन सबको परमानेंट मेंबर्स की तरह उसमें शामिल करना चाहिए, और वीटो पावर उनको भी देनी चाहिए इन सब देशों को। या तो आप वीटो पावर पूरी तरह से हटा दें, और अगर वीटो पावर कुछ देशों के पास है तो भारत के पास क्यों नहीं है। भारत जो है वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के टर्म्स में कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत को क्यों नहीं उसमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह उसमें शामिल किया गया है, क्यों नहीं वीटो पावर दी गई। हमारे पास इस तरह की शक्ति हो तो जरूर हम दुनिया के जो इस तरह के झगड़े हैं उनको सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं।
1: दयाल जी, जो बदलते हुए वैश्विक समीकरण है, तो ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, इसको आप कितना सफल मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि भारत को इसमें भी बदलाव की अब आवश्यकता महसूस हो रही होना इसमें चाहिए।
0: देखिए, भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी हमेशा अपनाता है, और इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है उसमें किसी एक के साथ तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं, हम सब देशों के साथ अपनी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाते हैं, और ऐसा ही करना जरूरी है। हमें कभी भी किसी गुट में नहीं शामिल होना चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी साथ में शामिल हो गए तो उसके सब संकट आपके संकट हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखते हैं तो आपके लिए यह हमेशा अच्छा होता है। भारत की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट पे बेस्ड है, और मेरे विचार में ऐसे ही रहनी चाहिए।
1: दयाल जी, जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, इस साल की शुरुआत से अगर देखें, खासतौर से फरवरी से देखें, तो काफी बदल गया है, और लगातार भारत के हितों पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। लेकिन भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है, तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें तो भारत की जो सोच है इसे लेकर के, उसे आप किस तरह से देखते हैं।
0: देखिए, भारत जो है वो बिलीव करता है इन सागर डॉक्ट, सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, और जो हमारी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन पे वो इसी पे आधारित है। हम हमेशा कहते हैं कि सब देशों के जो हित हैं वो बने रहें और किसी को नुकसान ना हो, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस रीजन में ये चाइना एक ऐसी कंट्री है तो सबका नाक में दम करके रखे हुए, क्योंकि चाइना जो है वह एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना चाहता है उसी का दबदबा रहे, चाइना चाहता है जो सप्लाई चेन्स है वो उसके कब्जे में हो, और इससे दूसरे देशों को नुकसान होता है। तो हम दूसरे देशों के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं कि चाइना का ये जो एक्सपेंशनिस्ट रोल है ये रुके और सप्लाई चेन कायम रहे। अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशेल्स का दौरा किया और सेशेल्स के साथ एक ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की कि हम जो वेस्टर्न इंडियन नेशन है उसमें अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मजबूत कर सके। और अभी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पे गए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और इन सबके साथ जो रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही है वो इस दिशा में कि सप्लाई चेन अच्छी बनी रहे, हमारी जरूरतें वो पूरी कर सके, उनकी जरूरतें हम पूरी कर सके। देखिए, ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि दोनों साइड्स को फायदा हो। अब जैसे न्यूजीलैंड है, तो साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम अच्छी, वो वहाँ के लोग रईस हैं और वो अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, तो भारत को एक मार्केट मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को 100% टैरिफ एग्जेम्पशन मिल रहा है वहाँ। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे क्षेत्र में हमारे जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों वो ऐसे हों कि उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, और चीन को ये संदेश गया है ये देखिए आप जो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ऐसा नहीं करने।
1: दयाल जी, पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को हम देखें और यदि अमेरिका ईरान जो तनाव है अगर थोड़ा बहुत लंबा खींचता है तो भारत के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, खासतौर पर हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, हमारे समुद्री व्यापार के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जो हमारी अपनी जरूरतें पूरी होती हैं वो, और भी तमाम चीजें हैं जो हमारे मानवीय हितों को ध्यान में रख करके हम जिन पर बात करते हैं, तौर पे प्रवासी समुदाय और भारतीय नागरिक जो बाहर हैं।
0: देखिए जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं पूरे रीजन में जो रहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हम उनके हितों में हमेशा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे कि उनके हितों पर हम ध्यान रख सकें। और पूरे इस संकट के दौर में हमने इस बात को सब देशों के साथ ये दोहराया है कि हम अपने एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के नुकसान को नहीं सह सकते, उनके जो हित हैं वो आप प्लीज कायम रखें। ईरान के साथ भी ये बातचीत हुई, उनको भी ये समझाया है, यूनाइटेड स्टेट्स को समझाया है और गल्फ कंट्रीज को। तो देखिए गल्फ कंट्रीज को तो जरूरत है हमारे लोगों की, लेकिन अगर वहां पर युद्ध बढ़ता है, ये फैलता है, तो जरूर ये जो हमारी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज का नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए ये जो हमारी क्रूड ऑयल की सप्लाईज है उधर से आती है, हमें रॉक फॉस्फेट वहां से मिलता है जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जब हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहते हैं तो वहां से इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और करता जाएगा, लेकिन अगर वो इस युद्ध में फंस जाएगा तो फिर तो ऐसा नहीं कर सकता, उस पर कुछ रुकावटें आ जाएंगी। तो सब वजहों की वजह से हम ये कहते आए हैं कि भाई पीस यहाँ पर स्थापित होना बहुत जरूरी है और हमारा हित इसी में है कि लड़ाई खत्म हो और हमारे जो इंटरेस्ट है, चाहे वो ऑयल सप्लाईज के हो, चाहे हमारे वो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन के हो, या चाहे जो हमारा बायलैटरल ट्रेड इन सब कंट्रीज के साथ उसके संबंध में हो, वो तभी प्रोटेक्टेड रहेंगे जब लड़ाई पर।
1: प्रभु दयाल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद
2: आप। अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: मधुश्री, विजय प्रकाश और साथियों के युगल स्वर में अभी आपने सुने स्वदेश फिल्म की ये रचना। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी और संगीत AR रहमान का।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं।

कुमार सानू को अभी आपने सुना फिल्म आशिकी में। गीत रचना समीर की थी और संगीत नदीम श्रवण का। श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अब हम आपको पुनः सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू की ही आवाज़ में समीर की गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

अंकित तिवारी को अभी आपने सुना फिल्म आशिकी 2 में। गीत रचना संदीप नाथ की थी और संगीत अंकित तिवारी का। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ दिल ने कहा फिल्म का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत निखिल विनय का।

0: उदित नारायण के गाए फिल्म कुछ दिल ने कहा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमरीका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक

0: गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविन्द्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स

0: और दो एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय मार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
2: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
3: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
2: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है।

0: अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU FTA and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goyal is currently on a 5-day visit to Spain, Belgium and Finland from today. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. The electronic goods exports increased by around 19% from $4.14 billion in June last year

मेरा कसूर क्या है। इस फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीत चित्रगुप्त का। श्रोताओं, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं दो बदन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल शकील बदायनी के और संगीत रवि का।

0: जी, कदम कदम पर तुझको धड़कते दिल की सदा आएगी जा दिल रुबा तेरी।
1: गीता दत्त, हेमंत कुमार और साथियों के युगल सुर में अभी आपने सुना हीर फिल्म का गीत। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत अनिल विश्वास का। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुना रहे हैं शोर फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने।

0: मुकेश, लता मंगेशकर और साथी गाए शोर फिल्म के इस गीत के साथ ही चित गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
1: में आप सबका स्वागत है, मैं हूं कनकलता। अच्छा, नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है, मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: श्रोता, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूले। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
2: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं, जैसे बाउलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे

0: से पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहां पे मानसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सके ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
1: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ जी नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
2: जी और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ सर आप कैसे हैं सर?
0: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
2: जी बिल्कुल आपने सही कहा था ना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है सर?
0: रवि जी आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग आप रवि जी कहाँ रहते हैं, आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे?
1: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
0: ओके सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में है। तो रवि जी यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई सारी छतों पे पानी बढ़ता एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके?
1: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर? तो
0: थैंक यू मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
1: जी,
0: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारे छतों पे अगर धूल मिट्टी है तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाए, लूज सैंड ऑफकोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहां कैसी भूमि कैसी है, वहां का एक्विफर लेवल कैसे, उस पे निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूं तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूं तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हजार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहां पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
3: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का जैसे सरकार की तरफ से तो कुछ जैसे कैसे अभी घर सूर्य घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करें, उसी टाइप से इसको भी एक

0: लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में, जैसे सर अभी बता रहे थे, इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए अब इस बारे में सोचे।
1: अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा
2: जी।
1: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूं, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी, करीब 500 घर हैं, वहां कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
2: मेरी जिम्मेदारी है,
1: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिकाधिक आप सभी जगह जानकर ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है, बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो जी, तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से, और जो मैंने बानस का अठा कर एग्जाम्पल दिया और जो अदर एग्जाम्पल जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंट के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
2: पानी इकट्ठा,
1: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
2: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और
1: ये भी प्रेरणा है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके।
2: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं
3: जी? नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
2: नमन,
1: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
3: जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
2: जी,
3: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
1: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर है, सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पर, और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया, फिर मैंने सैंड का, सो ताकि ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप कर

0: इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम, इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है जी, वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती। वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो, इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। लॉन्ग आंसर, मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है, वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: उसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
2: नमस्कार
1: रमाकांत जी।
0: नमस्कार
2: रमाकांत
0: जी। नमस्ते।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इसमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड टूट दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
0: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है, और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनकलता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा कि जैसे किसान, मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से, जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश, अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ।
1: भविष्य के लिए निवेश है,
0: भविष्य का बिल्कुल निवेश है। जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते हैं,
1: बच्चे डालते हैं,
0: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है।
1: हर बूंद कीमती है
0: जी, बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 2331048 2371717 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ का एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहां पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी, अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है, विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
2: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग उससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छा रेस्पॉन्स है, इस तरह की हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर या कोई संस्थाएं सरकारी जिसके लिए प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाए, हम क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली जो चीज होना तो इसको करा जा सकता है।
0: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं
1: जी,
0: उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में तो एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें, आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले हैं सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
0: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
1: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं, इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या

0: सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: जी जी, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भू जल प्रबंधन आवश्यक है। और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनक लता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 462.6 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

थी और संगीत सलिल चौधरी का। आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए प्यासा सावन फिल्म का गीत, जिसे गाया है कमलेश अवस्थी ने। शब्द रचना संतोष आनंद की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

प्यासा सावन। जी हाँ श्रोताओं, यही था फिल्म का नाम, जिसका गीत अभी आपने सुना कमलेश अवस्थी के स्वर में। आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए शगुन फिल्म का गीत, जिसे गाया है जगजीत कौर ने। साहिर लुधियानवी की गीत रचना है और खय्याम का संगीत।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना, फिल्म शगुन में शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी और संगीत खय्याम का। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साहिब बीबी और गुलाम फिल्म का गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने। शब्द

अनवर को अभी आपने सुना फिल्म जनता हवलदार में। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं रजिया सुल्तान फिल्म की ये रचना।

निदा फाजली की शब्द रचना, खय्याम का संगीत। कब्बन मिर्ज़ा को अभी आपने सुना फिल्म रज़िया सुल्तान में। इस गज़ल के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए विदुषी पद्मा तलवलकर का गायन, राग है हमीर और केदार। पहले सुनिए इनका गाया राग हमीर।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विदुषी पद्मा तलवलकर का गाया राग हमीर। लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में राग केदार।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विदुषी पद्मा तलवलकर का गाया राग केदार। अभी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का इंदौर केंद्र समाचार आकाशवाणी से दिल्ली केंद्र से प्रसारित।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के

मिल रहा है?